जानते हो आज के दिन को मैं ना क्या कहती हूँ, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिंपली आफरीन, और अब सिंपल भाषा में पूछूं तो आज का दिन आपके लिए क्या है? आप बोलोगे आज तो वेडनेसडे है आफरीन, लेकिन आफरीन के लिए ना आज का दिन होता है उम्मीद वाला दिन। हाँ जी, वो दिन जहाँ पर हफ्ते का एक ऐसा दिन जहाँ आपने मेहनत तो की है बहुत, ठीक है, यू आर जस्ट पुटिंग योर सेल्फ टुगेदर, यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ, एक रूटीन में रहते हो और बहुत मेहनत करते हो ये पूरा हफ्ता, एंड देन कल का दिन से एक वीकेंड आता है आपके लिए, एक दिल में उम्मीद लेकर आता है कि हाँ अब वो दिन आएगा जहाँ पर हम अपने लिए जिएंगे, कुछ अपने लिए वक्त निकालेंगे। एंड वेनसडे ना इसी उम्मीद में कि हाँ अब ये चीज़ें आने वाली है, तो इसलिए मैं कहती हूँ उम्मीद वाला दिन, इसी उम्मीद में इसी सोच में ना दिन थोड़ा सा ना खुशी से गुजर जाता है, थोड़े से एक तसल्ली दे देता है वेनसडे। तो उम्मीद के साथ साथ इसे तसल्ली वाला दिन भी कह सकते हो। और फिर आएगा ना हमारा थर्सडे फ्राइडे, खुशियों वाला दिन, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। फिलहाल के लिए तो इसी उम्मीद और तसल्ली के साथ शो की शुरुआत करते हुए कि यार उम्मीद है अच्छी बातें होंगी, और तसल्ली है कि यार आफरीन है तो अच्छे गाने भी बजेंगे। राइट हियर ऑन वर्चुअल मॉर्निंग्स, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskaba la puskaba na sakaba na. Rabala. Murga, murga. Na vidva la murga. Mirci, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: हाँ जी कौन?
2: हेलो, किससे बात करनी है?
3: किससे बात करनी है?
2: भैया नंबर चेक करके
3: दोबारा मिला?
2: पागल
3: पता नहीं
2: कौन बोल रहा
3: है।
4: इको आ रहा है, इको।
2: हेलो।
3: जेल साले भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ।
2: भैया
3: नंबर चेक के मिला?
2: हेलो। भैया क्यों
3: परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है यहाँ पे फोन करे जा रहा है,
2: भैया
3: अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास।
2: पागल
3: कहीं का?
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
2: रवि
4: रवि, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें इको नहीं आएगी। बहुत परेशान कर दिया आपने
2: भाई।
4: आप खत्म कर दो यार।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: खटखट पूरे
7: बनता
6: बनता हूँ।
7: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
6: खटखट हूँ दैट।
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: अजी देखो तो ड्रामा क्वीन मैं थोड़ी ना, ड्रामा तो ये किया जा रहा है। अब आप ही मुझे बताओ, एक हफ्ता बस हम दूर है ये महीना खत्म होने से और इनका जो ड्रामा है खत्म ही नहीं हो रहा है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: हाँ जी, सलमान भाई का तो ड्रामा चलते रहेगा, बिग बॉस में एक अलग ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे तापमान का जो ड्रामा है ये काहे क्या चल रहा है भाई। उम्मीद ये है कि बस अब एक हफ्ते बाद तो अच्छे वाले दिन आएंगे। अब वो एक जो सितारा नजर आया था आसमान में, जहाँ कहना था कि बस उसके बाद ठंडी वाले दिन शुरू होंगे, दिन तो नहीं बट डेफिनेटली हमारी रात जो है बेरेबल हो गई है। अगर आज की रात की बात करें तो फिर दिन के वक्त टेम्परेचर है कुछ 39°C, वेर एज मिनिमम होगा 30°C, और एक अपने आप में इशारा ये देता है कि हाँ थोड़ी सी अच्छी वाली दिन, ह्यूमिडिटी अपने आप अपनी जगह पर है थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन रात के वक्त नहीं है। तो यार अब बहाने आपके नहीं चलेंगे, भले चाहे वेदर जितना ड्रामा करे, आप ड्रामा ना करते हुए चलिए इवनिंग वॉक शुरू कर दीजिए और फिर गानों का सिलसिला यहाँ पर फिलहाल जारी रखते हुए दिन की खूबसूरत शुरुआत कर दी है मैंने, यानी सिंपली आफरीन ने और मिर्ची इट्स हॉट।

आजकल कतर में ना सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है, रेक्स कहाँ हो तुम, मुझे मिल जाओ ना यार। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और अगर आपने न्यूज में सोशल मीडिया पर देखा होगा तो रेक्स एक मिसिंग कैट है जिसके सेफ रिटर्न के लिए की फैमिली ने 100,000 कतरी रियाल का रिवॉर्ड अनाउंस किया गया है। एंड वाइल एवरीवन इज होपिंग कि रेक्स अपने घर में सेफली पहुंच जाए, लेकिन इसी बहाने दुनिया के कुछ सीरियसली रिच कैट्स के बारे में पता चला है। और वो कुछ ऐसे हैं कि पहले हम बात करते हैं नाला कैट के बारे में। नाला नाम है इसका, कैलिफोर्निया का ये एक एनिमल शेल्टर से अडॉप्ट हुई थी नाला, और आज इंटरनेट की बिगेस्ट फेलिन सेलिब्रिटीज में से एक है। इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन प्लस फॉलोअर्स एक कैट के, यस इनफैक्ट इसके नाम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है फॉर द मोस्ट फॉलोड कैट ऑन द इंस्टाग्राम। अच्छा इतना ही नहीं, ओके फॉलोअर अपनी जगह पर है, लेकिन नला के एस्टिमेटेड नेटवर्थ जानोगे ना तो यू आर गोना रियली फेंट। ओके 100 मिलियन डॉलर्स बताई जाती है, जहां ये सोशल मीडिया ब्रांड कोलैबोरेशन से, मर्केंडाइज और पेट फूड बिजनेस से इसकी अर्निंग्स होती है, एंड इसने अपना पूरा एक एम्पायर खड़ा किया है। अब इतना ही नहीं, यू नो वॉट, देर इज वन मोर कैट विच होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द वेल्दीएस्ट कैट इन द गिनीज रिकॉर्ड, और वो है ब्लैकी। इट्स नॉट नला बाय द वे, ब्लैकी के मिलेनियर ओनर ने बेन री, जिसका नाम था, 1988 में अपनी डेथ के बाद उसके लिए 7 मिलियन पाउंड छोड़े थे। ओ माय गॉड, मतलब यार सोचो, एक कैट नला है जो फेम से फॉर्चून बना रही है, और एक कैट ब्लैकी है जिसको तो रील्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, सीधा इनहेरिटेंस में अमीर बन रही है। सो वेल, वापस आते हैं हमारे रेक्स के पास। अब भी फैमिली को इंतजार है कि रेक्स सेफली पहुंच जाए, और इसीलिए 100,000 रिवॉर्ड अनाउंस किया गया है। दैट्स इंटरेस्टिंग राइट, माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, और मिर्ची इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

देखो मेरे ख्याल से ना, किसी के साथ अगर कोई स्ट्रेंजर के साथ ऐसे आइस ब्रेक करना है ना, तो दो चीजें काफी कनेक्ट करती है, एक तो नॉस्टैल्जिया और मेरे ख्याल से एक खाना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन को सुन रहे हैं आप मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और देखिए, कतर में रहते हुए आप फूडी ना हो ऐसा हो नहीं सकता है ना बॉस, बिकॉज कतर में इतनी सारी क्विजींस, इतनी सारी वैरायटी आपको मिलती है कि यार ना चाहते हुए भी ना आप थोड़े से इंडल्जेंस में तो यहाँ पर कर ही लेते हो, है ना। सो वेल, खाने की जहाँ बात हो रही है ना, एक ज़माना था हमारे बचपन में जहाँ हमारे लिए एक सोल फूड, घर के खाने की बात ना करते हुए ना, हम बाहर के खाने की बात करेंगे, होते थे चाट, पानी पूरी, है ना, और फिर छोले भटूरे, आई मीन वड़ा पाव, फॉर मी बीइंग फ्रॉम मुंबई, के मारे गरम गरम सा वड़ा पाव, ये हमारी लिस्ट के आइटम्स थे। लेकिन अभी के बच्चों को पूछो जी, पास्ता, पिज्ज़ा एंड सो मेनी मोर थिंग्स, मोमोज और क्या कहते हैं सुशी और ये सारी चीज़ें। लेकिन आउट ऑफ ऑल आई थिंक सो पिज्ज़ा एक ऐसी चीज़ है विच टॉप्स द लिस्ट फॉर द किड्स एंड नॉट ओनली फॉर द किड्स, आई थिंक सो कहीं ना कहीं हम अडल्ट के लिए भी, क्योंकि हमने क्या ना पिज्ज़ा जैसा आइटम ना बचपन में हमारे इतना हमारे टाइम पे था ही नहीं पॉपुलर, तो वो अभी अभी इतना अच्छा हमें खाने मिल रहा है, तो इससे गिल्टी गिल्टी बट यस, इसके फैन तो हम भी है। जहाँ मैंने पिज्ज़ा की बात छेड़ी है, थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत जो पिज्ज़ा इंडस्ट्री यानी हमारे कतर के बहुत बड़े ब्रांड से जुड़े हुए हैं और आज बहुत सारी करने वाले हैं अबाउट दिस इंडस्ट्री। सो यू गॉट टू स्टे ट्यून्ड। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज बताओ कि वो बचपन में एक ऐसी कौन सी चीज थी जो आप बाहर खाना पसंद करते थे, भले ही वो छुप छुप के क्यों ना हो या मम्मी पापा की एक स्पेशल ट्रीट क्यों ना हो, बट वो बाहर वाला आइटम मुझे बताइए। 5000 1896 मीनवाइल आफरीन है आपके साथ।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
3: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो क्या। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
2: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बताइए।
0: मैं मेरी एक्स को भुला नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ?
1: अरे ब्रो, ये तो अच्छी बात है ना, अपनी एक्स का नाम अपना पासवर्ड बना ले, कभी भूलेगा ही नहीं ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
2: Mirchi One. It's hot.
3: Well, मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7 बजे की तरफ और आफरीन का साथ है आपके साथ मिर्ची इट्स हॉट
0: टाइम चेक
4: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yeah,
2: it's Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
1: ओके।
2: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
1: बट इसमें करने क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं?
1: मैं।
2: और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन।
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: मिलता है।
2: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
1: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
1: Have you gone mad?
2: आपने पॉटी लगाई है बच्चे कभी? और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। आप
1: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग।
2: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
1: हेलो
2: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
1: हाँ, हु आर यू?
2: सर मनीष।
1: हु आर यू?
2: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
2: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं। मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
4: किड्स आर बैक टू स्कूल, बिजी शेड्यूल्स, होमवर्क, क्लासेस, टेस्ट, फ्यू, so much to do. We know education is important, but hey, little moments of fun are important too. So are you ready to make your school day a little more exciting?
5: Because Mirchi Recharge driven by GWM is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises, because learning comes with responsibility, but responsibility deserves a little fun too.
4: This initiative is driven by GWM.
6: Ja Simran, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: देखो मेरा मानना तो ऐसा है ना, कोई भी चीज की शुरुआत सेलिब्रेशन करने से ज्यादा माइलस्टोन सेलिब्रेट करने में ज्यादा मजा आता है। एंड एस्पेशली जब माइलस्टोन कोई ऐसे वैसा छोटा नहीं 20 साल का हो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज हम बात कर रहे हैं अबाउट माय योर्स एवरीवन्स फेवरेट ब्रांड एंड दैट इज पापा जॉन्स। और पापा जॉन्स को कंप्लीट हुए हैं 20 ईयर्स, और इस पर और स्पॉटलाइट डालने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं CEO ऑफ पापा जॉन्स मिस्टर जोसेफ जोसेफ। मिस्टर जोसेफ प्लीज टेल कि क्या खास आप लेकर आए हो 20 साल की खुशी में।
1: See, what I can say that we are celebrating 20 years, but I want the customer in Qatar to celebrate with us the 20 years. So who don't like cash? So
0: wow.
1: we decided that give 200,000 cash prize to the people in Qatar.
0: Wait. Can you repeat that? Have I heard it right, or my audience have heard it right? 200,000, really?
1: Yes, 200,000 cash prizes.
0: My God, सुन रहे हो ना?
1: So that's what I can say. The promotion is started already in September 1st onwards. It will end 15 December, and the lucky draw will be on 17 December. And first prize will be 100,000.
0: Wow.
1: Then 50,000,
0: wow.
1: 25,000, 10,000, 5,000, 5,000, 3,000, and 2,000. So all together 200,000 we are giving away to our sweet customers.
0: My gosh, this is happening, I think so, for the very first time in Qatar. कि आप कुछ खा रहे हो और बदले में आपको उसका पैसा ऐसा वैसा नहीं, इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट मिलने वाली है।
1: Yes, and also we have an attracting prize, free pizza for 1 year for 20 customers.
0: So
1: that means whole year without paying, they can come to Papa John and eat free pizza for a year.
0: Definitely, Mr. Joseph, जो पिज्जा के एकदम पिज्जा पगलूज, as I call, that means पिज्जा लवर्स out there, उनके तो कान खड़े हो गए हैं। सो यस, इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी पापा जॉन्स लेकर आया है, एंड आई एम श्योर आज शाम को ये लोग आज का प्लान और डिनर प्लान सेट कर रहे हैं विद पापा जॉन्स। सो वी आर गोना टॉक मोर अबाउट पापा जॉन्स जर्नी, अबाउट पापा जॉन्स एज अ ब्रांड इन कतर, विद वन एंड ओनली CEO ऑफ पापा जॉन्स मिस्टर जोसेफ जोसेफ राइट हियर ऑन मिर्ची। यू गॉट स्टे ट्यून्ड विद अस, और सुनते रहेगा मिर्ची मॉर्निंग्स, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज बस 24 घंटे ही रहेंगी।
1: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
2: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
1: क्या?
2: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
3: मिर्ची, इट्स हॉट। दिस इज द फ्यूचर मैन।

पास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
3: I like that song.

0: आई फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
4: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
3: This initiative is driven by GWM.
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी.
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: देखो ये चीज से तो आप 100% अग्री करोगे कि आपके फैमिली मेंबर्स हो या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो, किसी को एक चीज पर मनवाना कितना डिफिकल्ट होता है ना. कहीं घूमने जाना है सो फिर से डिस्कशन, कोई मूवी देखनी है कौन सी देखनी है फिर से डिस्कशन, लेकिन खाने के मामले में शायद ऐसा ना होता होगा. Especially जब हम पिज्जा के बारे में बात कर रहे हैं. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड पिज्जा ना somehow seems to cut across age groups. बच्चे हो, टीनेजर्स हो, एंड लेट्स एडमिट इट, वी adults also लव इट. एंड when आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली अ पिज्जा ब्रांड, इट हैज टू बी पापा जॉन्स, विच इज आवर फेवरेट. और पापा जॉन्स से मिस्टर जोसेफ जोसेफ, COO ऑफ पापा जॉन्स इज विथ हियर. एंड पापा जॉन्स के बारे में एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी मिस्टर जोसेफ, दैट it has become of course quite a familiar and a popular choice of families across Qatar. How important is that family audience for you, and what goes into keeping the brand relevant to both kids and adults at the same time?
1: See, family audience is very important for us. That's what, you know, each and every year we also did a special program for the family. You can say that family means start from the kids.
0: True.
1: Yeah, so the kids Pizza Academy, which we do every year, that's really connected to the people. And I will say that when jab aap pizza khate ho tab to aap bachcha hi ho jata hai. So that feeling will be there, that the childhood remembrance will come back, that's all will think they will be there. So we try our level best to connect to each and every family in Qatar to make them happy, bring them to Papa John.
0: How nice. मतलब अपने ब्रांड को किस तरह से रेलिवेंट रखना है, दैट इज द कोर रूट के आप उस फैमिली से जुड़े रहे, दैट इज द प्रिंसिपल आई थिंक सो ऑफ पापा जॉन्स. अ ब्यूटिफुल. सो इनके बारे में और भी बातें करेंगे राइट हियर विद मी CEO ऑफ पापा जॉन्स मिस्टर जोसेफ जोसेफ. और आप सुन रहे हो मुझे यानी सिंपली आफ्टरनून को ऑन मिर्ची. इट्स हॉट 89.6.
2: It's hot.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरा हस्बैंड मेरी बात ही नहीं सुनता, क्या करूं?
1: अरे तो टेंशन काहे को ले रही है, उसको ना साइन लैंग्वेज में समझाना, नहीं तो लिख के दे दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: देखिए, वी ऑल आर अवेयर कि पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो पिछले एग्जैक्टली 10-12 सालों में कतर कितना ज्यादा ग्रो किया है, लेकिन एक ऐसा ब्रांड जितना कतर ग्रो करते गया है उतने ही ज्यादा ग्रोथ खुद की भी किया है, और वो कैसे? वो हर नई जगह में अपनी पहचान छोड़ना, अपनी छाप छोड़ना, ये ब्रांड को बखूबी आता है। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट पापा जॉन्स, और मेरे साथ में जुड़े हैं CEO ऑफ पापा जॉन्स, मिस्टर जोसेफ जोसेफ। वेल, देर आर सो मेनी स्टोर्स इन कतर, मिस्टर जोसेफ जोसेफ। हम जहाँ जाते हैं, कोई गली, कोई मॉल, एवरीवेयर वी फाइंड पापा जॉन्स, एंड दैट्स वॉट मेक्स अस कनेक्ट विद दिस ब्रांड इवन मोर। सो मिस्टर जोसेफ, आपका आगे का क्या प्लान है, और हमारे ऑडियंस को बताइए भाई एग्जैक्ट काउंट ऑफ स्टोर्स कितने हैं अभी पापा जॉन्स के?
1: इफ यू आस्क मी, एज ऑफ नाउ अपने पास 59 स्टोर्स है, 59 आउटलेट्स आर देयर। सो आवर प्लान इज लाइक दैट, जो गली गली में, कतर का हर गली गली में पापा जॉन को ले, जब पब्लिक चाहते हैं पापा जॉन पिज्जा खाना है तो दे विल नॉट फेस एनी इश्यूज, सो दे जस्ट टर्न अराउंड, बाय पिज्जा, एंजॉय द प्रोडक्ट। दैट्स व्हाट आवर प्लान। फ्यूचर वी विल बी ओपनिंग मोर स्टोर, बट इट्स नॉट लाइक दैट वी विल ओपन 10 और 20 लाइक दैट, बट हर कोने कोने पे, जिस जगह पे पब्लिक रहता है, मतलब कस्टमर्स आर देयर, वी विल बी ओपनिंग एंड मेकिंग देयर लाइफ ईजी टू बाई पापा जॉन पिज्जा।
0: वंडरफुल, फैंटास्टिक। और यहाँ तो सिर्फ पिज्जा की बात नहीं हो रही है, हम कैश के बारे में भी बात कर रहे हैं। और पिज्जा और कैश का कैसा कनेक्शन है? मतलब आप तो कैश दे के पिज्जा लेते हो, यहाँ पर कुछ उल्टा होने वाला है। क्या होने वाला है? यू गॉट टू स्टे ट्यून्ड विद अस, यानी CEO ऑफ पापा जॉन्स मिस्टर जोसेफ जोसेफ एंड आफरीन, राइटर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: बोल रहा हूँ
4: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ। आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, आप ये पे नहीं कर रहे हैं। आपको
3: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
4: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
3: 23
4: एक सेकंड सर। सर आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
3: बिल आया था 2200 रूपए का।
4: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
3: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
4: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
3: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
4: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर। 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
3: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
4: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
3: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
4: हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
3: चिल्लाने का क्या मतलब है?
4: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ, आपका मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
5: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
3: हेलो
4: सर, से जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार। आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
3: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
4: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
3: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहे हैं यार।
4: नहीं तो आपसे बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज।
5: सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे। और
3: कुकड़ों को
4: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
7: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मिल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मिल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
8: खट खट,
9: कौन है?
8: अज्जू।
9: अज्जू कौन?
8: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए।
9: खट खट, हु दैट?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

Well, definitely, there is no rocket science behind this. कि आप कोई चीज खरीदने जाते हो, आप कोई खाने की चीज खरीदने जाते हो, आप पैसे देते हो और चीज ले लेते हो. लेकिन इसका उल्टा हुआ तो यानी आप कोई खाने की चीज खरीद रहे हो और बदले में वेल डेफिनेटली देर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड दिस. कि आप कोई चीज खरीदने जाते हो, आप कोई खाने की चीज खरीदने जाते हो, आप पैसे देते हो और चीज ले लेते हो. लेकिन इसका उल्टा हुआ तो

0: वेल आस्था गिल की आवाज में ये गाना स्त्री वन से राइट हियर ऑन मिर्ची. मैं हूँ आफरीन आपके साथ. बहुत सी बातें आज हमने कही सुनी पापा जॉन्स के सीओओ से राइट हियर, लेकिन नाउ शो को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है और आपको गोल्ड के अपडेट देने का वक्त आ गया है. गोल्ड अपडेट. देखिए आज का जो गोल्ड रेट है दैट इज पैम्प 1 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 583 खत्री रियाल, वेर एज 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2734 खत्री रियाल. 10 ग्राम गोल्ड बार की बात करें तो 5399 खत्री रियाल चल रहा है. पैम्प 1 ounce गोल्ड बार इज फॉर 16688 खत्री रियाल एंड पैम्प 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 61969 खत्री रियाल. ये थे आज के गोल्ड के रेट्स. तो गोल्ड लेना हो ना लेना हो लेकिन अपडेटेड हमेशा रहनी चाहिए, है ना. सो वेल माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ. अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए आगे.
1: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars and earn Qatar Airways Avios today. Visit our branches or download the app now.
0: थोड़ा सा 90s नॉस्टैल्जिया में चले. आमिर खान की शायरी और अलका याग्निक की आवाज. Enjoy it on Mirchi.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

से देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। आई जस्ट लव आमिर खान का अंदाजा, उनका जो अंदाजे बयां होता है। इनफैक्ट फना मूवी में भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने इतनी गजब की शेर व शायरी की है। तो बस आगे बढ़ते हैं यार थोड़ा शो से। अभी मैं तब अगर मैं शेर व शायरी में रुक गई ना तो देन आई कैन जस्ट गो ऑन, सो बेटर है थोड़ा सा वर्तमान में आ जाती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। वर्तमान में आते हुए आफरीन लेकर आई है आपके लिए एक्सचेंज रेट्स। जो ये कहते हैं कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.18, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज 76.09। बांग्लादेशी टाका की बात करें तो इट इज 33.71 और एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं श्रीलंकन रुपीज दैट इज 90.35। अगर नेपाली रुपीज की बात करें तो एक कतरी रियाल के बदले आपको मिलने वाले हैं नेपाली रुपीज 41.88। ये थे आज के एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां और गानों का सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये अगला गाना प्ले करना चाहूंगी, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: गोल्ड रेट कब बढ़ेगा कब गिरेगा, फेस्टिवल शॉपिंग के टाइम ये टेंशन क्यों?
1: With Tanishq's best gold rate offer, अपनी फेवरेट ज्वेलरी चूज करें और सिर्फ 20% एडवांस पे करके बुक कर दें। जब फाइनल परचेज कंप्लीट करेंगे तब बुकिंग डेट या बिलिंग डेट में से जो गोल्ड रेट लोअर होगा वही मिलेगा। मतलब फेस्टिव शॉपिंग प्लान कीजिए विदाउट पेइंग द फुल अमाउंट टुडे। ऑफर वैलिड अंटिल 8th नवंबर 2026 एट Tanishq लुलू हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी। ओपनिंग सून एट अल वतन सेंटर एंड बरवा विलेज। Tanishq, jewelry buying made easier. TNCs apply.
2: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
3: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
2: This initiative is driven by GWM.

0: वाओ, ये गाना सुनने के बाद ऐसा लगता है सही में कहीं तो उड़ जाऊं मैं. लाइक आई रियली वॉन्ट टू गो टू सम माउंटेन्स, या फिर अपना लोकल भी चलेगा यार, मीना पोर्ट से भी एकदम दिल खुशी हो जाता है. सो वेल, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8:43 की तरफ, और ये भी बता रहा है घड़ी कि बस आफरीन अब मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स जरा खोल दो.
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.
0: वेल, मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स का आज का सवाल कुछ ऐसा है. स्टारकास्ट बताने वाली हूँ एक सर्टन मूवी का. आपने गेस करना है विच मूवी इज आफरीन टॉकिंग अबाउट. वो कौन सी मूवी है बताइए मेरे दोस्तों, जहां पर आपको नजर आएंगे संजय दत्त, ओके, अर्ष द्वारसी. आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, नो, बट आगे बढ़ते हैं. रितेश देशमुख, ऑल राइट, एंड जावेद जाफरी. हालांकि इसमें और भी ज्यादा लोग हैं, लेकिन मैं ये चार बताना ही चाहूंगी, इससे ज्यादा नहीं. तो वो बताइए कौन सी पिक्चर है जिसमें संजय दत्त है, अरशद वारसी है, रितेश देशमुख है, जावेद जाफरी. आई थिंक सो यू कॉट इट विद जावेद जाफरी. ये नहीं बताना चाहिए था मैंने तुमको, है ना. 5000186 इज माई नंबर. इंतजार कर रही हूँ आपके जवाबों का. मेट्रो इन दिनों से ये एंजॉय कीजिए गाना, वन ऑफ माय फेवरेट्स. या और मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अभिजीत सावंत, जब भी आपके बारे में सोचते मोहब्बतें लुटाऊंगा यही याद आता है। बारिशों के लिए एक अलग

0: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत. थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
2: रेडी
3: रेडी
2: टू लर्न?
3: यस.
2: टू प्ले?
3: एब्सोल्युटली.
2: टू ग्रो?
3: विद मेजराती.
4: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
3: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
4: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
7: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
8: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
9: बहुत कुछ होगा.
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Well, Shraddha Kapoor ne actually kai sare gaane gaaye yaar. This is also sung by Shraddha Kapoor. Awaaz actually mein achhi hai, surili keh sakte hai. Having said that, bahut sare auto tunes and all ye sare gadgets jo hai, devices, I don't know what you call, ye aane ke baad mere khayal se main bhi surili hi sound karungi. Very good morning and welcome back. Simply Afreen ka saath hai this beautiful morning. Aur yahan sawal jawab ka silsila chal raha tha jahan hum khel rahe the. Mirchi Mystery Box. Exactly. Mirchi Mystery Box hum yahan khel rahe jahan maine ek starcast sunaya tha. Ek starcast ka like movie mein kaun kaun hote hain wo naam liye the aur aapne guess karna tha aakhir ye movie hai kaun si. So well, meri movie mein pehle aate hain Sanjay Dutt, okay, phir aate hain Arshad Warsi. Ab jab Sanjay Dutt aur Arshad Warsi ka naam lo na to bas ek hi like movie ki jo series hai wahi dhyan mein aati hai. But let me go ahead, jahan Ritesh Deshmukh bhi hai. Yes, and I think so this particular person gave away the answer, jahan Javed Jafri bhi hai. And now it becomes super easy for you, right?
1: Hi, Afreen.
0: Hi.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: His movie name is Dhamal.
0: Dhamal.
1: My name is Roshan.
0: Okay.
2: Haji, madam. Good morning. My name is Dinesh Yadav. Haji.
0: Gajab. Aapki energy bhi gajab. Hello.
3: Afreen, good morning.
0: Very good morning to you.
3: It's Dhamal movie.
0: Ekdam Dhamal.
3: It's Usama here.
0: Okay, good morning, Usama. Good morning.
4: The movie name is Dhamal.
0: That's right. Okay.
5: The name of the movie is Dhamal.
0: बिल्कुल सही अख्तर साहब, द नेम ऑफ द मूवी इज धमाल. एंड विद दिस आज तो इतने सारे धमाकेदार आंसर्स आए हैं एंड माय लाइक व्हाट्सएप इज लाइक फ्लडेड विद आंसर्स. अहाना का मैसेज है, राकेश का मैसेज है, देन लेट मी रीड आउट द नेम्स. मुजम्मिल है, ताहिर है, मोहम्मद यूसुफ खान है, किरण करेशिया है, प्रिंसन है ऑफ कोर्स जो हर रोज सही जवाब भी देते हैं. देन आई हैव समवन हियर जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, अगेन समवन जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है. सो और कोई है सर्जर राव. सर्जर राव आई थिंक सो दिस इज द नेम एंड आई हैव आई होप आई हैव सब प्रोनाउंसिएटेड इट राइटली. और इस तरह से बहुत सारे लोगों ने, सना सैयद है, आफ्ताब है, एंड द लिस्ट इज लॉन्ग, बट वो लोग के भी नाम है जिन्होंने अपने नाम यहाँ लिखे नहीं है. विद दिस धमाल मूवी का गाना तो मुझे कोई खास समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक धमाकेदार धमाल गाना आपके लिए यहाँ पर बजाती हूँ मैं. नेहा कक्कड़, मीका पाजी एंड कुमार सानू, वॉट अ कॉम्बिनेशन यार. बट यस, it is quite possible in aankh mare. One more remix. Enjoy it on Mirchi Mike Sadil Takafreen ke saath. It's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी? फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरी बीपी कभी मुझे सीरियसली लेती ही नहीं, क्या करूं?
1: तो प्रभु क्या है ना कि आप तुरंत ही हॉस्पिटल की ओर प्रस्थान करें, सीरियस लोगों को ना वहीं ले जाया जाता है।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6 Mirchi One. It's hot.
2: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन का साथ है आपके साथ और शो को आगे बढ़ाते हुए मिर्ची घड़ी का इशारा पहले देख लेते हैं. सुबह के 9 बजे है एग्जैक्टली एंड अगला गाना विशाल मिश्रा की आवाज में आपका इंतजार कर रहा है. मिर्ची इज हॉट.
3: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

देखो कुछ भी कहो, जब से हम कतर आए ना, भले ही हमने फुटबॉल कभी फॉलो नहीं किया था, लेकिन नाउ फुटबॉल में इंटरेस्ट डेफिनेटली आ गया है। और फुटबॉल देखने का मजा ना क्राउड के साथ ही आता है, मानते हो कि नहीं? Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो सिप्री और फ्रीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए, अगर आप इस बार गल्फ कप जो है फॉलो करने वाले हैं, तो मैं बता दूं, द 23rd ऑफ सितंबर से लेकर 6th ऑफ अक्टूबर तक 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम अरेबियन गल्फ कप जो है, इसके सिलेक्टेड मैचेस वहां पर फ्री लाइव स्क्रीनिंग्स कर रहे हैं। दिस इज हैपनिंग ऑन लेवल 7 आउटसाइड द ई स्पोर्ट लाउंज। एंड यूजफुल पार्ट ये है कि एंट्री कंप्लीटली फ्री है, कोई प्रायर रजिस्ट्रेशन भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट यहां पर बस ये है कि सीटिंग जो है वहां लिमिटेड है, देन इट्स ऑब्वियसली ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर मिलेगी। वेल, टूर्नामेंट जो है वो स्टार्ट होने वाला है 23rd ऑफ सितंबर को, और ये है इराक वर्सेस ओमान फर्स्ट मैच जो है, उसके बाद में सऊदी अरेबिया की मैच है वर्सेस कुवैत एट 9 PM। देन कतर सपोर्टर्स जो है, आपके डेट्स नोट कर लीजिए, बिकॉज कतर वर्सेस बहरीन इज सेप्टेम्बर 24th एट 9 PM। एंड देन उसके बाद में यमन वर्सेस कतर जो है सेप्टेम्बर 27th है एट 6:55 PM। एंड UAE वर्सेस कतर इज 30th ऑफ सेप्टेम्बर एट 8:30 PM। दोनों जो सेमीफाइनल्स है ऑन अक्टूबर 3rd होने वाले हैं, एंड द फाइनल इज गोना हैपन ऑन अक्टूबर 7th। और इसकी भी जो स्क्रीनिंग है ना वहां पर होने वाली है। वेल, इंटरेस्टिंगली द म्यूजियम इज नॉर्मली क्लोज्ड ऑन ट्यूजडेज, लेकिन अगर मैच के दिन आने वाली है देन ये जो म्यूजियम है ये खुला रहेगा, यानी सेप्टेम्बर 29th एंड अक्टूबर 6th को। सो देखिए, यहाँ पर अब स्टेडियम में देखने का अपने पास अभी जो है ये फैसिलिटी फिलहाल नहीं है, क्योंकि मैचेस कतर में नहीं हो रही है, बट आप साथ में यहाँ पर एक साथ बैठकर जब देखेंगे तो वो स्टेडियम वाली वाइब कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगी। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieja la burga. Milchi, burga.
1: हेलो,
2: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
1: स्पीकिंग.
2: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके दो मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ.
1: हाँ, sure.
2: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
1: जी.
2: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
1: बोल, कौन रहे हैं?
2: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
1: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
2: बिल्कुल
1: अलाउ नहीं करते. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
2: सही बात है,
1: गर्ल्स को नहीं देंगे.
2: सही बात कह रही है. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
1: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है.
2: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं, हाँ,
1: आप किस से बात कर रहे हैं?
2: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
1: हेलो.
2: हाँ बोलिए.
1: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए.
2: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
1: साहब, मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं.
2: हाँ?
1: नकली तरह से आप मेरे से
2: नहीं,
1: बातें कर
2: नहीं
1: रहे हैं.
2: नकली तरीके से क्या?
1: नहीं, असली मुझे दिख रही है. असली औकात नहीं कर रहे हैं.
2: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
1: तो कोई बपौती है क्या?
2: नहीं, बात नहीं, तो तमीज सीखिए.
1: नहीं,
2: तमीज
1: नहीं, बिल्कुल नहीं सुननी है.
2: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए. आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
3: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
4: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
3: This initiative is driven by GWM.
5: Cut, cut!
6: Who that?
5: Zaheer!
6: Zaheer! Zaheer who?
5: Zaheer si baat hai. Main hoon, aur koi nahi.
6: Cut, cut! Who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

लता जी और उदित नारायण की आवाज में दिल तो पागल है का ये गाना डेफिनेटली हमारे दिलों को एकदम थाम कर पागल कर देता है. एंड आई थिंक सो आई शुड नॉट बी डूइंग मच टॉकिंग बिकॉज ऐसे गाने के बाद में ना ये गानों का सुरूर जो है वो बरकरार रखने के लिए अगला गाना जो मैं सुना रही हूँ हरिहरन और सुखी पाजी की आवाज में, हाय ताल मूवी का ये गाना लेट मी ऑल्सो गेट लॉस्ट इन टू इट फॉर सम टाइम. और आप भी माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा और मिर्ची सॉट.

0: वेल माय बंधुओं, चलो थोड़ा सा माल मसाला आपको सुनाती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। और बात अगर बॉलीवुड की है तो डेफिनेटली थोड़ी सी ऐसे मसालेदार ही होती है ना।
1: मिर्ची स्पॉट बॉय, बॉलीवुड की अंदर की खबर। आफरीन मैडम, पता है क्या?
0: जी हाँ, हमें तो पता है, थोड़ा सा पर्दा उठाते हैं क्योंकि आपकी मैडम को ये बॉलीवुड की अंदर की बात पता है कि दृश्यम, पहले तो दृश्यम के बारे में बात करेंगे। मेरे पास तीन पहले खबरें हैं। दृश्यम द कंक्लूजन, अब इसकी थर्ड पार्ट आ गई है। अब जानते हो क्या, आपको पता है शूटिंग स्टार्ट होने में जब सिर्फ 7 दिन बाकी थे ना, तब अक्षय खन्ना फिल्म से एग्जिट कर चुके हैं। Really? And then came जयदीप अहलावत on board. अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एक्टर्स सिर्फ रिप्लेस नहीं हुआ है, जयदीप के कैरेक्टर में उसको फिट करने के लिए काफ़ी सारे स्क्रीन प्ले के पोर्शंस लास्ट मिनट रीराइट करना पड़ा था। सो वेल, ये एक हो गई हमारी अंदर की खबर। उसके बाद दूसरी खबर ये है कि अजय देवगन डायरेक्टर रोहित जुगराज के साथ उनकी अपकमिंग हॉरर थ्रिलर का टाइटल रिपोर्टेडली सूर्यास्पर्श रख रहे हैं। ठीक है, फिल्म अभी डेवलपमेंट में है तो कास्ट और बाकी डिटेल्स का पर्दा हम यहां धीरे धीरे खोलेंगे जरूर। एंड बात करते हैं अब तीसरी खबर के बारे में, जहां अक्षय कुमार और श्रद्धा कपूर की पिक्चर आ रही है ईथा नाम की। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार इसका प्रपोज्ड बॉक्स ऑफिस क्लैश जो होने वाला था दिसंबर में, दिसंबर की सबसे बड़ी मूवी अपेरेंटली किंग के साथ में, अब ये जो है इट इज अ सोलो थिएट्रिकल रिलीज ऑन 4th of December। सुदृश्यम में लास्ट मिनट कास्टिंग की ट्विस्ट हो या अजय देवगन की एक हॉरर थ्रिलर की ब्रूइंग चल रही हो या दूसरी तरफ अक्षय और श्रद्धा कपूर का दिसंबर की मूवी की बात हो, सब कुछ आफरीन ने बता दिया आपको। बाकी आगे की बातें ऐसे ही लाते रहेगी ऑन माय शो मिर्ची मॉर्निंग्स। माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट।

0: कुमार सानू की आवाज में ये गाना, खूबसूरत सा गाना कुछ ना कहो। और आपको मंजूर होगा कि इस वक्त पर अगर हम कुछ ना कहें तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और इस वक्त पर आफरीन जनरली अपनी शायरी लेकर आती है, और जो शायर, ये जो शेर व शायरी के बहुत शौकीन होते हैं ना, उन्हें ये सेगमेंट बहुत पसंद आता है। तो खास आपके लिए आज कुछ ख्याल ऐसा आया कि कभी कभी ना कुछ बातें हम जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर है, है ना, एस्पेशली जब बात रिश्तों की हो। इसी इमोशन पर आज की आफरीन की शायरी।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है, गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, लहरों को पानी से मिलाया नहीं जाता, होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना बनाया नहीं जाता। क्या बात है। शायद ये जो लास्ट लाइन थी शायरी की, वही पूरी बात कह गई। ऐसा सच बात है ना, दैट कुछ रिश्ते मांगे नहीं जाते, बनाए नहीं जाते, बस बन जाते हैं। और जो दिल से अपने हो ना, उन्हें बार बार ये बताना भी नहीं पड़ता कि तुम मेरे अपने हो। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, और मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
2: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
1: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

नीरज श्रीधर सुकृति कक्कड़ की आवाज में ये पावर पैक्ड गाना राइट ऑन मिर्ची। और देखते ही देखते 4 घंटे गुजर गए। और जाते जाते ना आफरीन एक बात आपसे जरूर कहना चाहेगी, बस एक डायरेक्ट दिल से दिल का कनेक्शन कहते हैं ना, तो क्या है ना, हम अक्सर सुनते हैं, हम अक्सर लोगों को कहते भी है ना कि यार एक कान से सुनो और दूसरे कान से ना निकाल दो। बट प्रॉब्लम ये है ना, मैं जानती हूँ आपकी और ये मेरी फीलिंग्स बहुत कॉमन रही है इस बात में कि दोनों कानों के बीच में ना दिमाग होता है और उससे थोड़ा आगे ना दिल भी होता है, इसलिए हर बात निकल कहाँ पाती है। कुछ लव्स ना हम भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं और कुछ बिना परमिशन के दिल में ना परमानेंटली बुकिंग कर देते हैं। तो बस यही कहना चाहूंगी जाते जाते आज के लिए कि जो अच्छा सुना है वो साथ ले जाए और जो अच्छा नहीं लग रहा है ना उसको सीरियसली दूसरे कान से निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मैं सिंपली आफ्टरनून लेना चाहूंगी आपकी इजाजत है। कल मिलूंगी फिर से सुबह, नई बातें, नया दिन, लेकिन वही अपनापन लेकर। माइक से दिल तक आफ्टरनून के साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Apache Helpline.
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: सर ऑफिस में किसी को मेरी वैल्यू पता नहीं है. Oh, no. क्या करूं?
1: Bro यार, it's so simple. कल ऑफिस में सबको अपनी सैलरी बता दे. Everyone will know your value.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: द शो स्टार्ट्स इन 5 4 3 2 1 गो।
2: कुछ तो बदल गया है बॉलीवुड में। पहले फिल्म में सुपरस्टार हो तो एक्साइटमेंट अपने आप आ जाती थी, बड़ी फिल्म हो तो थिएटर जाना ऑलमोस्ट कंपल्सरी था। लेकिन आज नाम बड़ा हो सकता है, फिल्म को फिर भी खुद को प्रूव करना पड़ता है। शायद बॉलीवुड बदला है, लेकिन मुझे लगता है असली बदलाव हम में आया है। हम सब अब सिर्फ स्टार्स को नहीं देखते, सिर्फ स्केल से इम्प्रेस नहीं होते, सिर्फ नॉस्टैल्जिया के नाम पर टिकट नहीं खरीदते। हम डिसाइड करते हैं कि क्या देखना है, क्या सुनना है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है। शायद इसलिए बॉलीवुड को समझने का सबसे ऑनेस्ट तरीका उसकी अनाउंसमेंट्स नहीं, उसकी ऑडियंस को सुनना है, और हम वही करने वाले हैं। हाय, दिस इज द मिर्ची टॉप 20। माय नेम इज सुरेन सुंदरम एंड शुरू करते हैं उस गाने से जो एक सिंपल बात याद दिलाता है। हाइप खत्म हो जाती है लेकिन म्यूजिक रह जाता है। शान एंड सुखविंदर सिंह की आवाज में दी ओजीज, दिस इज हैवान का गाना रंगियारा, कंपोज बाय प्रीतंदा एंड इट्स द फर्स्ट सॉन्ग हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20।
3: नंबर 20।

कभी नोटिस किया है कुछ गाने एक ही दुनिया के नहीं लगते। माशूका को जरा ध्यान से सुनो, एक साइड पर मेलेडी है और दूसरी तरफ देयर इज दिस प्रोडक्शन। दोनों की लैंग्वेजेस काफी अलग है, फिर भी गाना एक ही आइडेंटिटी रखता है। इसे कहते हैं जॉनर हाइब्रिड। सिंपल भाषा में मेलेडी एक दुनिया से होती है और बीट दूसरी दुनिया से, और जब दोनों सही हाथ में मिलते हैं तो तीसरी दुनिया पैदा हो जाती है।

बेशरम रंग एफ्रोबीट और लैटिन इलेक्ट्रॉनिक टेरिटरी में चली जाती है, लेकिन शिल्पा राव की आवाज यार, वो तो ऐसा लगता है कि उनकी आवाज में गजल वाली नजाकत है। एंड देन देयर इज दिस, क्योंकि तो

तुमियों में मेलेडी एक हिंदी गजल की तरह दिल से निकलती है और पीछे पियानो और स्ट्रिंग्स उस इमोशन को ऑलमोस्ट एक वेस्टर्न क्लासिकल स्केल दे देते हैं। एक तीसरा गाना भी है ये आपको अच्छी तरह मालूम है।

चन्ना मेरेया, सूफी मेलेडी, उर्दू अल्फाज, लेकिन गिटार और ड्रम्स उस हार्ट ब्रेक को आगे ढकेल रहे हैं। यानी जॉनर बदल रहा है, इमोशन नहीं। और अब विशाल मिश्रा इसी गेम को और ज्यादा तोड़ रहे हैं। अ सोलफुल हिंदी मेलेडी, बट इट्स गॉट ईडीएम, इट्स गॉट डबस्टेप, इट्स गॉट रैप, यानी कि तीन अलग अलग म्यूजिकल वर्ल्ड्स एक ही गाने में। जॉनर की बाउंड्रीज म्यूजिशियन बनाते हैं, म्यूजिक खुद नहीं। ये है वक्त फ्रॉम द फिल्म टॉक्सिक, नंबर 18 पर डेब्यू विशाल मिश्रा और कौशल किशोर की कोलैबोरेशन। नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची वन इट्स हॉट मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा.
1: Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yeah,
2: it's Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from .com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए.
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट? तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे.
1: बट इसमें करना क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है.
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर. देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन.
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: हैंड.
2: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी.
1: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ. बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं.
1: हैव यू गॉन मैड?
2: आपने पॉटी लगाई बच्चे की कभी?
1: टॉकिंग अबाउट.
2: और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मान देते हैं, आज चमकदार मान देते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे. हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा. आप
1: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग.
2: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते. इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा.
1: हेलो
2: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना.
1: हाँ. Who are you?
2: सर मनीष.
1: Who are you?
2: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com. How dare you call me?
2: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ. बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं. मूंगफली बेच दीजिए सर. सर आपको सी डाल रहा हूँ. मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा. सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना. दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है. आप रेडियो मिर्ची पे, मैंने मुर्गा बनाया आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.
3: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
4: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
5: कैसे रुक सकता है?
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
6: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 17.

मुबारक हो अखिल सचदेव, अब आप आवारापन 2 की इस मेमोरेबल साउंडट्रैक का हिस्सा बन गए हैं। पिया घर आया इस हफ्ते है नंबर 17 पर, और ऑनेस्टली आवारापन 2 सुनते ही मुझे लगा था कि यार अगर इमरान हाशमी वापस आ रहे हैं तो शायद मोहित सूरी भी इनके साथ ही आ रहे होंगे। वो रियूनियन तो नहीं हुआ, लेकिन मोहित सूरी का एक और यूनियन होने वाला है, और ये वाला काफी अनएक्सपेक्टेड है। राम गोपाल वर्मा यानी RGV, क्योंकि RGV कहानी लिख रहे हैं, मोहित सूरी डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, यू वोंट बिलीव इट, यशराज फिल्म्स। यानी एक तरफ वो फिल्म मेकर जिसने हिंदी सिनेमा के अंडरवर्ल्ड को एक पूरी सिनेमैटिक लैंग्वेज दी थी, दूसरी तरफ वो फिल्म मेकर जिसका सिनेमा अक्सर डार्कनेस के बीच भी दिल की धड़कन सुनता है, और तीसरी तरफ YRF जिसका नाम सुनते ही गैंगस्टर सिनेमा तो पहला जॉनर नहीं आता है दिमाग में। और शायद इसी में इस कोलैबोरेशन की सबसे इंटरेस्टिंग बात छुपी है। RGV जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया कैसे काम करती है, मोहित सूरी जानते हैं कि उस दुनिया के अंदर लोग कैसे टूटते हैं। RGV ने दुनिया लिखी है, मोहित उस दुनिया के लोगों को फील करवा सकते हैं। और RGV ने खुद कहा है कि मोहित सूरी ने उनके स्क्रिप्ट को अपने फ्रॉम द हार्ट कैरेक्टर्स, इमोशनल म्यूजिक और अल्ट्रा रियलिस्टिक एक्शन के साथ और आगे बढ़ा दिया है। ये मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि RGV खुद डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी दुनिया किसी दूसरे फिल्म मेकर के हाथ में सौंप रहे हैं। राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म को धुरंधर से भी बड़ा बताया है, एंड कॉन्फिडेंस के लिए उनको सल्यूट तो करना पड़ेगा। लेकिन नंबर 16 पे है धुरंधर का ही शरारत, एंड उसके बाद इस कंपैरिजन को हम वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि असली जवाब ये नहीं है कि फिल्म धुरंधर से बड़ी होगी कि नहीं। असली सवाल ये है कि क्या मोहित सूरी एक राम गोपाल वर्मा गैंगस्टर स्टोरी को मोहित सूरी की फिल्म बना सकते हैं बिना उस RGV DNA को खोए हुए जिसने इस जॉनर को इतना स्पेशल बना दिया था। डू जस्ट थिंक ऑफ सत्या एंड कंपनी एंड यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन 12 साल पहले मोहित ने एक विलन में भी एक रिफॉर्म गैंगस्टर की कहानी सुनाई थी, एक ऐसा आदमी जो अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकलना चाहता है लेकिन अपना पास्ट नहीं छोड़ पाया था। He was looking towards the future with the soundtrack of एक विलन। ये गाना अंकित तिवारी की आवाज में है। This is my rewind track of the week। मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा बिकॉज इस गाने को आप बखूबी जानते हैं। Top 20 Rewind।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी। मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन।

हमारी प्रॉब्लम इमेजिनेशन की तो कभी थी ही नहीं। इंडिया में कहानियों की कमी नहीं है, ऐसे हीरोज जो उड़ते हैं, ऐसे योद्धा जिनके पास इम्पॉसिबल शक्तियां हैं, ऐसे वेपन्स, ऐसे अस्त्र जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं, गॉड्स, डीमंस, शेपशिफ्टर्स, इमॉर्टल्स। फिर भी बॉलीवुड के सुपर हीरोज की दुनिया में जाते ही जादू थोड़ा कम हो जाता है यार। मेन स्ट्रीम सिनेमा में सिर्फ दो ही फिल्म्स ऐसी याद आती हैं जो इस जॉनर को सच में क्रैक कर चुकी हैं। एक 1987 यस 1987 ऑलमोस्ट 40 साल पहले आई फिल्म मिस्टर इंडिया एंड देन ऋतिक रोशन की कोई मिल गया। और दोनों की एक बात कॉमन है, उन्होंने फिल्म की शुरुआत सुपर हीरो के साथ नहीं की, इंसान के साथ की। पहले हम उनके साथ जुड़े, फिर उनकी दुनिया में कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ, शायद यही बॉलीवुड बार बार फिसल जाता है। हम सुपर हीरो बनाते वक्त सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहले डिजाइन करते हैं, उसकी यूनिवर्स बाद में। और बॉलीवुड का दूसरा प्रॉब्लम शायद यही है कि हम सुपर हीरो फिल्म को भी कभी कभी अपनी एग्जिस्टिंग मसाला वाली ग्रामर से लिखने लगते हैं। हीरो है तो रोमांस होगा, रोमांस है तो गाना होगा, विलेन है तो बड़ा एक्शन होगा। और सब कुछ बड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि बिगर इजंट ऑलवेज बेटर। और इसीलिए आमिर खान, आर बाल्की और साजिद नाडियाडवाला एक सुपर हीरो फिल्म बनाना चाहते हैं, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, एंड दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि आमिर एक ऑब्वियस सुपर हीरो नहीं है, बाल्की ऑब्वियसली एक सुपर हीरो फिल्म मेकर नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि आमिर खान सुपर हीरो बनेंगे कि नहीं, सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड आखिरकार एक ऐसी सुपर हीरो दुनिया बना सकता है जो बॉलीवुड की फिल्म ना लगे जिसमें सुपर हीरो हो। शायद इसी का जवाब हमारी सबसे पुरानी कहानी के पास है। बीच में वैसे एक गाना है नंबर 14 पर कॉल्ड साड़ी फ्रॉम धमाल 4, लेकिन उसको जरा साइड में करते हैं, क्योंकि जिस फिल्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो हमारी सबसे बड़ी कहानी है, रितेश तिवारी की रामायण। और जिस कहानी में भगवान है, राक्षस है, बानर है, अस्त्र है, और वो सफर है जो हजारों सालों से हमारी कल्पना के हिस्से बने हुए हैं। उसका पहला म्यूजिकल ग्लिम्प्स किसी सुपर हीरो एंथम की तरह नहीं है, वो एक प्रार्थना की तरह है। एआर रहमान के म्यूजिक में अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज। नंबर 13 पर ये है जय जय राम। नंबर 13।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा। आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है। But really, tell us, how old were you when you made the song?
2: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था। सारे बादल नीचे आ चुके। And उस बीच में then I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है। देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
1: अब Twinkle Twinkle Little Star और बाबा Black Sheep के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, It's Hot।
0: Bollywood Boldal, Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal, only on Mirchi, It's Hot।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
8: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शौरमा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है।

समझो ना, कहानी का नाम है वन, लेकिन शुरुआत हो रही है रोमांटिक गाने से। इसे ही तो साइंस कहते हैं बाबू भैया। पिछले हफ्ते नंबर 14 पर डेब्यू किया था और इस हफ्ते दो स्पॉट्स ऊपर उठा हुआ है। क्लियरली एल्गोरिथम काम कर रहा है। वैसे बॉलीवुड में आजकल सबसे ज्यादा यूज होने वाला साइंस शायद यही है, एल्गोरिथम। हम क्या सुनते हैं, क्या स्किप करते हैं, क्या रिपीट करते हैं, किस सिंगर को बार बार लूप पे सुनते हैं, ये डेटा कलेक्ट होता है, पैटर्न समझा जाता है और फिर उसी पैटर्न के हिसाब से हमें आने वाले गाने मिलते हैं। साउंड्स परफेक्ट राइट? लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर म्यूजिक एक परफेक्ट एल्गोरिथम में बिठाया जा सकता तो क्या हमें वो फेवरेट गाने मिलते जो किसी एल्बम में नंबर 5 या 6 पे थे? नहीं ना। तो चलो 10 साल पीछे चलते हैं, 2016 में एक फिल्म की तरफ जिसका नाम था बार बार देखो। कटरीना कैफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और उस साउंड ट्रैक में एक गाना था काला चश्मा। इट वॉज अ बैंगर, फेमिलियर साउंड, इंस्टेंट हुक, डांस फ्लोर, शादियों में बज रहा है, रील्स में चल रहा है, एल्गोरिथम के लिए बिल्कुल परफेक्ट गाना और वो हिट भी हुआ। लेकिन उसी एल्बम में एक और गाना आया, खो गए हम कहां, क्वाइट इंटीमेट हेडफोन्स वाला गाना, ऐसा गाना जो शोर में नहीं तन्हाई में काम करता है। और फिर मुझे इसकी वजह से इतने सारे गाने याद आए, वेकअप सिड का एक तारा, अनजाना अनजानी का टाइटल ट्रैक, फिर ले आया दिल फ्रॉम बर्फी। ये ऐसे गाने जो किसी एल्गोरिथम के हिसाब से ऑब्वियस ब्लॉकबस्टर मटेरियल नहीं लगते, लेकिन ये गाने सिर्फ हिट नहीं होते, ये आपके अंदर एक घर बना लेते हैं। और शायद यही एल्गोरिथम हार जाता है। डेटा बता सकता है कि हम क्या सुनते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकता कि हम किस गाने से प्यार करने वाले हैं, वो कौन सा गाना है जो हमने रात को सुना है। पैटर्न प्रिडिक्ट किया जा सकता है, फीलिंग नहीं। और शायद इसलिए ग्रेट म्यूजिक वो नहीं है जो एल्गोरिथम हमारे लिए चूज करता है, ग्रेट म्यूजिक वो है जो हमारे अंदर कुछ ऐसा डिस्कवर करवा देता है जिसका डेटा अभी तक बना ही नहीं है। तो इसलिए जिस गाने की मैं बात कर रहा था वही गाना आज मैं आपको सुना रहा हूँ। दिस इज जस्टीन रॉयल एंड प्रतीक कुहाड़ विद खो गए हम कहां। Top 20 Rewind.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: क्या बताऊं अब, मेरे बंदे ने आज फिर से मुंह लटका रखा है।
1: अरे क्या कर रहे हो मैडम, जल्दी से उसका मुंह हुक से उतारो। मुंह को लटकाते नहीं, फ्रिज में रखते हैं। बाहर रहेगा तो डिकम्पोज हो जाएगा और पुलिस भी आसानी से ढूंढ लेगी।
2: I'm joking.

भाई तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौको ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: यार कभी कभी किसी फिल्म को देखते हुए ना एक अजीब सी चीज होती है। फिल्म अच्छी लगे या बुरी, लेकिन उसके कैरेक्टर्स से एक रिश्ता नहीं बन पाता है, एक अपनापन फील ही नहीं होता है। एंड कॉकटेल के साथ मेरे लिए कुछ ऐसा ही हुआ था। देखो फिल्म की कहानी को लेकर बहुत ओपिनियंस थे, लेकिन मेरे लिए जब मैं फिल्म के एक्टर्स के इंटरव्यू सुन रहा था यार, वो कनेक्शन नहीं बन पाया था। उनकी बातचीत ज्यादातर इंग्लिश में हुआ करती थी, एंड शायद इसी वजह से पता नहीं क्यों स्क्रीन पर जब मैं उस दुनिया के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था तो एक फासला सा महसूस हो रहा था। क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होती, भाषा हमारी कल्चर होती है, हमारी मेमोरी होती है, हमारी इंस्टिंक्ट होती है। एक ऐसे एक्टर हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ, नाम है उनका जयदीप अहलावत, और उन्होंने इस चीज को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर की थी।
1: मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं इतना सरप्राइज हो गया जब मुझे पहली बार किसी को देखा कि एक्टर हिंदी नहीं पढ़ सकता, लिखी हुई हिंदी नहीं पढ़ सकता। अगर वो देवनागरी में लिखा गया है नहीं पढ़ सकता उस स्क्रिप्ट, एंड मुझे लगा कि इससे बुरा नहीं हो सकता। ऐसे ही नॉर्मल नए नए कोई आ गया बेचारे किसी को ऐसा कहीं केरला से, नहीं नहीं हिंदी भाषी प्रदेशों से निकले हुए लोग और वो हिंदी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते हैं प्रॉपर। हर दूसरे वर्ड पे फंबल है, हर दूसरे वर्ड, क्योंकि उनको सिर्फ सुनने की आदत है, रोमन में दे दोगे तो पढ़ लेंगे।
0: देखो मुझे लगता है कि जयदीप भाई की बात का असली वजन देवनागरी पढ़ पाने या ना पढ़ पाने में नहीं है। सवाल ये है कि अगर आप हिंदी सिनेमा के एक एक्टर हो और हिंदी आपके लिए सिर्फ वो भाषा है जो आपको डायलॉग कोच या स्क्रिप्ट से सीखनी पड़ती है, तो भाई कुछ ना कुछ रास्ते में जरूर छूट गया है। और इसलिए मुझे कुणाल खेमू जैसे एक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। कुणाल ने खुद इंग्लिश और हिंदी के इस डिवाइड पर बहुत कुछ बोला है। आप यूट्यूब पे जाके कोई भी उनका इंटरव्यू देख लो, उनकी हिंदी लेकिन अगर आप सुनोगे तो वो ट्रांसलेटेड नहीं लगती, वो यार अपनी लगती है। शायद इसलिए उनकी आने वाली फिल्म वाइब, उसमें उनके कैरेक्टर्स की बातचीत में वो फेमिलियरिटी है, वो फीलिंग है कि ये लोग किसी फिल्म के डायलॉग नहीं बोल रहे, ये लोग तो वैसे ही बात करते हैं। और अब उसी एनर्जी को कुणाल खेमू थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 9 पर डेब्यू कर रहा है वाइब का टाइटल ट्रैक कंफ्यूजन, इरफाना हमीद और शुभम सुपन खिलरी की आवाज में। दिस इज ऐसी मेरी वाइब।
2: नंबर 9।

Number 8.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6
1: इट्स हॉट
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ जी कौन
3: हाँ जी कौन
2: हेलो किससे
3: बात करनी है
2: भैया किससे बात
3: किससे बात करनी है
2: भैया नंबर चेक करके
3: नंबर चेक करके दोबारा मिला
2: पागल
3: पागल पता नहीं कौन बोल रहा था
4: इको आ रहा है इको
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो
3: हेलो जेल साले भाई आपको मारूंगा तो मैं बता रहा हूँ नंबर देख के मिला
2: हेलो
3: हेलो क्यों परेशान कर रहा है किसी को पागल हो गया क्या यार पता नहीं कौन है फोन करे जा रहा है फोन करे जा रहा है अबे पागल हो गया क्या यार महंगा पड़ जाएगा नंबर आ गया मेरे पास पागल कहीं का
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया क्या नाम है सर आपका आप बुरा मत मानिएगा प्लीज
2: रवि
4: रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे उसमें एको नहीं आएगी
2: कुकड़ू को
4: भाई कुकड़ू को बहुत परेशान कर दिया आपने
2: भाई
4: आप खत्म कर दो यार
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 7
6: पान

0: ये गाना है तो 2026 का, लेकिन मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ 2005 में। एक सिंगिंग रियलिटी शो में एक लड़का विनर बना था और दूसरा सिक्स्थ आया था। विनर का नाम था काजी तौकीर और सिक्स्थ प्लेस पर आया था अरिजीत सिंह। आज काजी बिग बॉस के घर में है और एक नई जनरेशन उन्हें फिर से प्यार दे रही है। लेकिन अरिजीत, आज हम उनका नाम उस लिस्ट में लेते हैं जहां प्लेबैक लेजेंड्स बैठे हुए हैं, रफी, किशोर, सानू, उदित, सोनू और अब अरिजीत। फनी है ना, कभी कभी वक्त नंबर्स का मतलब ही बदल देता है। और अब जब अरिजीत अपने प्लेबैक करियर से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, हम एक अजीब से मोमेंट में हैं। गाने अभी भी आ रहे हैं, लेकिन ये वो गाने हैं जिनकी कमिटमेंट अरिजीत ने रिटायरमेंट लेने से पहले ही की हुई थी। यार हमें नहीं पता कि अगला अरिजीत का गाना कब आएगा। जब आ रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा खुशनसीब हैं और शायद इस वक्त उनकी कहानी का एक हिस्सा वो इंसान शायद सबसे अच्छे से समझता है जो 2005 में उनसे आगे निकल गया था, काजी तौकीर।
1: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। और उसकी चीज मुझे यही पसंद है कि आप देखो कभी भी वो शोज करता है, कभी ऐसे वो करता नहीं, यू नो
2: दिस इज माय कार, यू नो आई एम समवेयर, यू नो ऑल दोस थिंग,
1: बहुत सिंपल। स्कूटी पे घूमता है, दूध लेने जाता है मुर्शिदाबाद, दूध वूध ले, सब्जी वब्जी खरीद, इट्स अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम जैसा वो 17 तब था वैसा ही आज भी।
3: उसके अंदर करप्शन नहीं, ऑनेस्ट। हिंदुस्तान में क्या, मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में आज की डेट में अरिजीत जैसा ना कोई है, आई डोंट थिंक कोई आएगा।
0: शायद इसलिए अरिजीत की आवाज सिर्फ हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा नहीं बनी, वो हमारी जिंदगी का बैकग्राउंड स्कोर बन गया। और एक दिन वो बैकग्राउंड म्यूजिक खामोश हो जाएगा। वो वक्त आ रहा है, लेकिन म्यूजिक कभी रिटायर नहीं होता। एक आवाज रुकती है तो कोई दूसरी आवाज उसकी जगह ले लेती है। नंबर 5 पर कुणाल खेमू की फिल्म वाइब से अमित त्रिवेदी की आवाज और उन्हीं की कॉम्पोजिशन, दिस इज रातों में आना।
4: नंबर 5।

0: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष।
1: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: सुरेन के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: नंबर 4।

0: आंखों से तूने ये क्या कह दिया। और मुझे लगता है कि इस गाने के टॉप 5 तक पहुंचने का सबसे बड़ा रीजन इसका म्यूजिक नहीं है, फैमिलियरिटी है। क्योंकि गाना चलता है तो जहन में आते हैं आमिर खान, रानी मुखर्जी और 90s का वो साउंड। देखो कुछ चीजें सुनते ही हमारी मेमोरी है ना वो एक्टिवेट हो जाती है, और बॉलीवुड फैमिलियरिटी को बहुत अच्छे से समझता है। पुराने गाने रिक्रिएट करो, पुरानी फ्रेंचाइजीज को वापस ले आओ, पुराने कैरेक्टर्स को दोबारा स्क्रीन पे खड़ा कर दो, क्योंकि फैमिलियरिटी में रिस्क नहीं होता और ऑडियंस पहले से इन्वेस्टेड होती है। नंबर 3 पर बाय द वे है चुनरी चुनरी, इसका एक और एग्जांपल बाय द वे, जहां एक पुरानी याद को नए जमाने के लिए दोबारा पैकेज किया गया। लेकिन इसी बॉलीवुड में कभी कभी एक ऐसा फिल्म मेकर आता है जो फेमिलियरिटी को साइड में रखकर इतना ओरिजिनल साउंडट्रैक क्रिएट करने की कोशिश करता है कि गाने फिल्म को समझने का दूसरा रास्ता बन जाते हैं। रामायण का जो नया गाना आया है उसे सुनते ही मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार रणबीर कपूर को हमने आखिरी बार स्क्रीन पर 3 साल पहले देखा था एनिमल में। और एनिमल के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो रणबीर के साथ सबसे ज्यादा जो मुझे याद रहता है वो है उस फिल्म का म्यूजिक। और उस मैडनेस के पीछे एक मेथड था और ये रणबीर ने खुद बताया।
1: See, to give music for a love story is very easy. एक फैमिली क्राइम ड्रामा के लिए 7 सुपरहिट गाने देना is such a hard thing. हर गाना, हर बैकग्राउंड पीस शूटिंग के पहले रेडी था। अगर हम फाइट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि गाना लिप सिंक नहीं है, तो he could have easily recorded it after shoot. But every piece which is the 3 hour 20 minute पे जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हुआ है वो रेडी था शूटिंग के पहले। सो एज एक्टर जब आप बैकग्राउंड सॉन्ग सुनते हो आपको वो टोन मिल जाता है सीन का, इट मेक्स इट इजियर फॉर यू।
0: इसलिए एनिमल में म्यूजिक सीन के बाद नहीं आता, म्यूजिक सीन के अंदर पहले से मौजूद होता है। और शायद एनिमल की कामयाबी ने संदीप रेड्डी वांगा को अब एक और चीज दे दी है और वो है आजादी। क्योंकि उसका जो सीक्वल आ रहा है ना एनिमल पार्क, शायद ये आजादी कितनी दूर जाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन अगर पहली फिल्म को इंडिकेशन है तो म्यूजिक चीर फाड़ करने वाला है। अगर मुझे एनिमल के उस पूरे इमोशनल लैंडस्केप में कोई ऐसा गाना ढूंढना है जो पूरी कहानी को समेट ले तो मेरे लिए वो ये गाना है बी प्राक की आवाज में। इट इज माय पिक ऑफ द वीक।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: क्या सोचने लगी?
1: सोच रही हूँ, तुम क्या सोच रहे हो?
0: मैं

0: Hollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
3: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी। तो बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
2: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: दोस्ती का गुस्सा है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
5: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
6: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
7: खूब मिलेगा, मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: नंबर दो पर आते ही एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस हो गया है। एक तरफ वो फिल्म है जिसे रणवीर सिंह के करियर का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ नंबर वन पर फिर से वही गाना है जो एक ऐसी फिल्म से आया है जिसके बारे में शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि वो इमरान हाशमी के करियर की टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। आई एम टॉकिंग ऑफ द फर्स्ट आवारापन। इमरान का जो अर्ली करियर था ना, वो काफी इंटरेस्टिंग था। फिल्में चल रही थी, गाने भी चल रहे थे, ऑडियंसेस भी आ रही थी, लेकिन जो क्रिटिक्स है उन्हें इमरान हाशमी में एक्टर से ज्यादा एक इमेज नजर आती थी। किसिंग सीन्स आए तो सीरियल किसर का टैग लग गया, लेकिन फिर आई आवारापन। देखो फिल्म नहीं चली ये सब जानते हैं, लेकिन इमरान के लिए कुछ बदल गया। उन्होंने पहली बार अपने आप को उस इमेज से बाहर देखना शुरू किया, और वो खुद इस जर्नी को कुछ इस तरह याद करते हैं।
1: मेरा कभी नहीं था कि मुझे क्रिटिक्स को अपीस करना है। मुझ में कहीं एक चाह थी कि यार अभी बस हो गया, ये प्रोड्यूसर्स को ज्यादा ही दे हैव एक्सप्लॉइटेड द फैक्ट दैट देयर इज इमेज। एंड हाँ, फिल्में चल रही हैं, बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी मिल रही है, बट फ्रॉम इनसाइड आई नो लाइक हिम, सो इट वाज लाइक अ फायर टू काइंड ऑफ आल्सो एक्सप्लोर अनदर फैसेट ऑफ एक्टिंग जहाँ देयर कैरेक्टराइजेशन हो। एंड देन थैंकफुली वी स्टंबल्ड अपॉन दिस व्हिच टच्ड अपॉन सम रियली सेंसिटिव थिंग्स, यू नो, losing someone you love. So a very painful moments, and it kind of satiated me as an actor.
0: यार कभी-कभी एक्टर को करियर बदलने के लिए ब्लॉकबस्टर नहीं चाहिए होती है, उन्हें सिर्फ एक ऐसी फिल्म चाहिए होती है जो उन्हें ये प्रूव कर दे कि वो और भी कुछ कर सकते हैं। एंड आवारापन ने इमरान में वो जज्बात जगाए। उसके बाद डायरेक्टर्स आए, कैरेक्टर्स आए, और धीरे धीरे वो एक्टर भी सामने आया जो उस इमेज के पीछे छुपा हुआ था। और शायद इसलिए आज जब दुनिया आवारापन को सेलिब्रेट कर रही है, बॉक्स ऑफिस के लिए, नॉस्टैल्जिया के लिए, इमरान हाशमी के कमबैक के लिए, तो मुझे इस फिल्म की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये लगती है कि इसने इमरान हाशमी के पूरे इमेज को तोड़ दिया और बदलने का मौका दिया। एंड इजंट दैट व्हाट ग्रेट सिनेमा इज। फिल्म्स कभी कभी एक्टर को स्टार नहीं बनाती है, कभी कभी एक्टर को खुद से आगे जाने की परमिशन देती है। नंबर वन पर फिर से द रिलेशनशिप कंटिन्यूज। दिस इज तेरा मेरा रिश्ता।
2: One.

0: कुछ गाने खत्म हो जाते हैं, साथ में कुछ कहानियां, लेकिन कुछ आवाजें वो कहीं नहीं जाती। आज की कहानी मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। गाने चलते रहेंगे, यादें भी बनती रहेंगी, लेकिन हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट ऑन द मिर्ची टॉप 20, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: मैं मेरी एक्स को भुला नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ?
1: अरे ब्रो, ये तो अच्छी बात है ना, अपनी एक्स का नाम अपना पासवर्ड बना ले, कभी भूलेगा ही नहीं ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और जिंदगी में कई बार मैंने ये होते हुए देखा कि लोग अपने घर से तो कूड़ा निकाल देते हैं मगर घर के ठीक बाहर या फिर अपने मोहल्ले में कहीं फेंक आते हैं, है ना। कुछ दिन पहले एक बड़ा उम्दा शेर पढ़ा जो इसी मौजू पे था। तैमूर हसन साहब हैं, कहते हैं कि मुझको कहानियां न सुना शहर को बचा, मुझको कहानियां न सुना शहर को बचा, बातों से मेरा दिल न लुभा शहर को बचा, तू जाग जाएगा तो सभी जाग जाएंगे, ऐ शहर यार जाग जरा शहर को बचा, तू चाहता है तेरा घर महफूज हो अगर, तू चाहता है घर तेरा महफूज हो अगर, फिर सिर्फ अपना घर न बचा शहर को बचा। वाह जी वाह, किस तरीके से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात है वही बात शायद बहुत लोग को समझ में नहीं आती है। बहरहाल आपका ताशी है आपके साथ इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Energy.
2: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. Nagir bala burga. Mirchi burga.
3: Hello.
4: Hello, Kiran Pal ji se baat kar sakta hu main?
3: Bolo.
4: Kiran Pal ji. से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको।
3: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
4: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
3: 23।
4: एक सेकंड सर। सर आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
3: बिल आया था 2200 रूपए का।
4: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
3: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
4: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
3: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
4: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
3: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
4: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन आप पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
3: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
4: हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर, आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
3: चिल्लाने का क्या मतलब है?
4: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपका मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
5: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
3: हेलो
4: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
3: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
4: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
3: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
4: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है, मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
3: कुकड़ों को
4: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मिल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मिल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: रेडी
7: रेडी
6: टू लर्न?
7: यस।
6: टू प्ले?
7: एब्सोल्युटली।
6: टू ग्रो?
7: विद मेज़राटी।
8: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
7: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
8: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
9: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew! So much to do. We know education is important, but hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
10: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility, but responsibility deserves a little fun too.
9: This initiative is driven by GWM.
11: Our business is our business. None of your business.
12: Par didi, our entertainment is your entertainment. Entertainment.
0: Qatar ka number one radio station.
13: 89.6 FM. Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ और अब महफिल में मौका है, दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे। किस्सा कॉर्नर, किस्सा कॉर्नर
1: कि आपको सुनाए आपका ताशी आज का किस्सा जो आ रहा है मिर्जा गालिब के जानिब से, और किस्से का नाम तुमने मेरे पैर दबाए मैंने पैसे। एक रोज मिर्जा साहिब के जो शागिर्द थे मीर मेहंदी मजरूह, वो उनके मकान पर आए। देखा कि मिर्जा साहिब पलंग पर पड़े कराह रहे हैं, ये उनके पांव दबाने लग गए। मिर्जा साहिब ने कहा, भाई तू सैयद जदा है, मुझे क्यों गुनहगार करता है। मीर मेहंदी मजरूह न माने और कहा कि आपको ऐसा ही ख्याल है तो पैर दबाने की उजरत मतलब मजदूरी दे दीजिएगा। मिर्जा साहब ने कहा, हाँ इसमें हर्ज नहीं। जब वो पैर दबा चुके थे तो उन्होंने अजराह मजाह मिर्जा साहिब से उजरत मांगी, मजदूरी मांगी पैर दबाने की। तो मिर्जा साहिब ने कहा, भैया कैसी उजरत, तुमने मेरे पाँव दाबे मैंने तुम्हारे पैसे दाबे, हिसाब बराबर हो गया। मजाहिया बात कॉमिक रिलीफ के लिए देखिए जरूरी तो होती है, और वो अगर मिर्जा गालिब के किस्से से मिल रहा हो तो क्या बात है। मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार. तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए.
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा.
0: मिर्ची, इट्स हॉट.
5: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक.
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और एक वक्त के बाद इश्क जब परेशान कर देता है तो इंसान कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाता है और इश्क के नखरे उठाना नहीं चाहता फिर, और कहीं ना कहीं उस सामने वाले शख्स के ऊपर से भरोसा भी उखड़ जाता है। बिस्मिल सईदी साहब का वो शेर याद आता है कि दोहराई जा सकेगी ना अब दास्ताने इश्क, दोहराई जा सकेगी ना अब दास्ताने इश्क, कुछ वो कहीं से भूल गए हैं कहीं से हम आए हाय। और इसीलिए कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में किसी चीज में हाथ नहीं डालना चाहिए जिसमें दिक्कत का अंदेशा हो। शोख जी का शेर है कि जब दूर जा सकेगा ना रोएगा फिर बहुत, जब दूर जा सकेगा ना रोएगा फिर बहुत, ऐ शोख इसलिए तू हमारे से दूर रह, है ना पते की बात। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप और आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
4: I like that song.

0: फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें.
5: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है आपका ताशी पलटे और पढ़े अपनी डायरी के कुछ सफे।
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से।
1: मेरी दोस्त, एक जमाने की बात है, मेरा बड़ा बुरा दिल टूटा था और मैंने सोचा क्यों ना अपने गम को प्रोडक्टिव बनाया जाए और अपने दर्द को भुलाने के लिए उसे बैक बर्नर में डालने के लिए सबसे सही रास्ता मैंने समझा काम। अजी, ये वो जमाना था जब अपने ख्यालों की चीखें काम के हेडफोन लगा के दबा देते थे हम। कुछ सालों बाद मैंने पढ़ा कि जावेद अख्तर के वालिद जानिसार अख्तर साहब भी ऐसी ही कश्मकश से गुजरे थे और जब गुजरे थे तो उन्होंने लिखा था, ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें। इल्म का मतलब नॉलेज होता है और रिसाले मतलब मैगजीन्स। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। जान के थोड़ा अच्छा लगा कि अकेला नहीं हूं जिसने डिप्रेशन को एग्जॉशन से बहाल करने की कोशिश करी। लेकिन उसके दिए खत आज भी हैं मेरे पास। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: सर ऑफिस में किसी को मेरी वैल्यू पता नहीं है, क्या करूं?
1: ब्रो यार, इट्स सो सिंपल, कल ऑफिस में सबको अपनी सैलरी बता दे, एवरीवन विल नो योर वैल्यू।

0: 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: कहते हैं कि दिल से चाहो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये एक चीज नहीं हो रही है। मैं फोन छोड़ने की कोशिश करता हूँ रात को सोने से एक घंटे पहले। आई हैव रेड इट समवेयर कि रात को सोने से एक घंटे पहले तक फोन नहीं चलाना चाहिए तो अच्छी नींद आती है, इट इज गुड फॉर बॉडी, बट इट इज नॉट हैपनिंग। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है और ये आई नो मेरे साथ साथ बहुत सारे और लोगों की भी प्रॉब्लम होगी, बट इन केस समहाउ इफ यू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस देन डू लेट मी नो। इंस्टाग्राम पर हूं मिर्ची क्रिश के नाम से, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। कम देयर, लेट्स टॉक अबाउट इट, बिकॉज ये एक चीज दिल से चाहने के बाद भी नहीं हो रही है। फिलहाल दिल से मैं जो जो चाहता हूं उसके बारे में हम थोड़ी सी देर में बात करते हैं। गानों के उस पार आ रहा हूं, ओनली ऑन मिर्ची, मेरा नाम क्रिश है, इट्स हॉट।

0: Permite.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. Na vida, la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो,
4: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
3: स्पीकिंग।
4: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ।
3: हाँ, sure.
4: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
3: जी।
4: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
3: बोल, कौन रहे हैं?
4: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
3: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
4: बिल्कुल
3: अलाउ नहीं करते। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
4: सही बात है,
3: गर्ल्स को नहीं देंगे।
4: सही बात कह रही हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
3: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती हैं।
4: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं हाँ,
3: किससे बात कर रहे हैं?
4: मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
3: हेलो,
4: हाँ बोलिए।
3: हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए।
4: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
3: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं।
4: हाँ?
3: नकली तरह से आप मेरे से
4: नहीं,
3: बातें कर
4: नहीं
3: रहे हैं।
4: नकली तरीके से क्या?
3: नहीं, असली मुझे दिख रही है। असली औकात नहीं कर रहे हैं।
4: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार।
3: वो तो कोई बपौती है क्या?
4: नहीं, तमीज सीखिए। नहीं,
3: सुनिए, बिल्कुल नहीं सुनिए।
4: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए, आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया।
3: Okay.
4: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
7: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
6: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
8: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
6: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
9: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
10: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाउ। कॉल नाउ 7070-7687।

23 अक्टूबर को एक बिल्कुल नया फिनोमेना थिएटर्स में रिलीज होने वाला है। बिल्कुल नया ही है, इसका नाम सुनेंगे तो आपको भी लगेगा मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। द फिनोमेना दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड पहला प्यार दूसरी बार। दिस इज अ न्यू मूवी बाय अगेन लव रंजन, वही प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको। ये वही हैं जिन्होंने प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की स्वीटी ये सारी मूवीज रिलीज करी थी। उसके बाद तू झूठी मैं मक्कार, इसके बाद अब प्यार का पंचनामा स्टाइल में ही ये 6 न्यू कमर्स को लेकर आए हैं। और अगर इसका ट्रेलर आप देखेंगे जो कि कल रिलीज हुआ है, इसका ट्रेलर देखने में भी आपको सेम वाइब आएगी कि सेम प्रोडक्ट की नई पैकेजिंग है एंड सेम काइंड ऑफ पंचेस, सेम काइंड ऑफ दोस्ती, सेम काइंड ऑफ प्यार। सो आप भी एक बार देखो और मुझे बताओ, दूसरी बार नहीं, पहली बार अगर देख लिया हो तो दूसरी बार नहीं बैठी, नहीं बात है ना, कोई बात नहीं। इस मूवी का नाम भी नहीं बैठा, पहला प्यार दूसरी बार, कोई नहीं। आप देख के बताना कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। मिर्ची क्रिश के नाम से इंस्टाग्राम पर हूं, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माय नेम। मुझे तो एग्जैक्टली सेम लगा, तो मुझे ये लगेगा कि मैं वही मूवीज को दोबारा देख रहा हूं। बाकी आप बताना। दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।

0: तो नहीं।
1: रिसेंटली ओटीटी पर एक सीरीज आई थी जिसका नाम है मुसाफिर कैफे एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक्ड इट आल्सो। और अगर आप भी मोस्ट ऑफ द पीपल हो देन कांग्रेचुलेशंस, आपके लिए एक अच्छी खबर है। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। इनफैक्ट अगर आपको पहाड़ पसंद है तो आपके लिए डबल अच्छी खबर है। विक्रांत मेसी जो कि इस सीरीज में लीड एक्टर थे, उन्होंने ये अनाउंस करा कुछ टाइम पहले कि वो खुद के मुसाफिर कैफेज खोल रहे हैं। यस दिस इज ट्रू। ये कैफेज एक हिमाचल में होगा, एक उत्तराखंड में होगा, दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं ऑलरेडी। ये प्रोजेक्ट जो है वो उनके खुद की प्रोडक्शन कंपनी होममेड स्टोरी से टाइड अप है। ये कैफेज का जो लुक होगा वो रिक्रिएट करेगा एग्जैक्टली वही जो आपने सीरीज में देखा, रस्टिक सा, कोजी सा, एकदम फिक्शनल जैसे कैफे हमने देखा था। यहाँ पे हर लोकेशन में यानी कि इन दोनों कैफेज में 20 रूम्स ईच होंगे जहाँ पे आर्टिस्ट आए, रहें, जो भी उनका काम करना है करें। बेसिकली अगर आप वो स्लो वेकेशन पसंद करते हो ना कि पहाड़ों में जाएं, कुछ दिन रह कर आएं, वहीं से काम कर लेंगे, देन दिस इज द वन फॉर यू। एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये तो आई थिंक सबसे पहले जो लोग एक्सप्लोर करेंगे उनमें से मैं भी होने वाला हूँ, बट आई वुड लव इट। इनफैक्ट यू शुड ऑल्सो गो। बाकी अब कुछ बढ़िया से गाने सुनते हैं ओनली ऑन मिर्ची। मेरा नाम क्रिश है। इट्स ऑन।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

हैव यू एवर फेल्ट कि आपको आपके काम के प्रेशर की वजह से आपकी करेंट एज ऐसी लगने लगी है कि बहुत ज्यादा हो गई है? बेसिकली यू आर नॉट फीलिंग जैसा आपको फील करना चाहिए एट दिस एज. ऐसा आप ही के साथ नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर राइट नाउ. और ऐसा कई बार ये भी होता है कि आपको जितना प्रेशर लेना चाहिए उससे ज्यादा आपके आसपास के लोग आपको प्रेशर दे देते हैं, कर भाई कर वरना कैसे जिएगा ये जीवन. लेकिन एक महिला जिन्होंने इंस्पायर कर दिया होगा काफी सारे लोगों को, 30 ईयर ओल्ड ये महिला यूके में रहती है. एक हाई पेइंग करियर था इनका एज अ क्रिमिनल लॉयर. शी यूज्ड टू अर्न अ लॉट एंड शी जस्ट लेफ्ट हर जॉब डॉग्स को वॉक कराने के लिए. नाउ शी अर्न्स 50,000 रुपीज इंडियन करेंसी के हिसाब से पर डे एंड शी इज वेरी हैप्पी. शी सेज कि अब मुझे लगता है कि मैं 30 साल की हूं, अदरवाइज मुझे लग रहा था मैं बहुत ज्यादा ईयर्स की हूं. भाई ये सब पढ़ने के बाद मैंने अपने डॉग की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, हम दोनों की आंखें मिली और फिर वो मुस्कुरा कर चला गया. उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि डॉग्स भी मुस्कुरा सकते हैं अगर उनको सही में कोई चीज इंटरेस्टिंग लगे तो. उसको मेरा दुख इंटरेस्टिंग लगा यार, मैं भी कोशिश करूंगा. आई मीन वी कैन डू इट. अगर हमें उतना मटेरियलिज्म नहीं चाहिए ना तो हम भी अपनी जॉब छोड़ सकते हैं या नहीं, सोचना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा. अगर आपको कुछ बात करनी है इस बारे में देन इंस्टाग्राम पर हूं मिर्ची क्रिश के नाम से, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माय नेम. आ जाओ करते हैं बात. दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
2: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
1: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
1: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरा हस्बैंड मेरी बात ही नहीं सुनता, क्या करूं?
1: अरे तो टेंशन काहे को ले रही है, उसको ना साइन लैंग्वेज में समझाना, नहीं तो लिख के दे दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

मिस्ट्री थ्रिलर्स एक ऐसा जॉनरा है जो मोस्ट ऑफ द लोग पसंद करते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के पांच का पंच में पांच ऐसी मिस्टीरियस थ्रिलर मूवीज जो देख के मजा आ जाए, बिकॉज एक्चुअली बॉलीवुड इज गुड एट इट. स्टार्टिंग ऑफ विद नंबर 5 आती है तलाश, द आंसर लाइज विद इन. 2012 में आई ये मूवी स्टारिंग आमिर खान एंड करीना कपूर खान, डायरेक्टेड बाय रीमा कागती, जिसमें इंस्पेक्टर शेखावत और उनकी वाइफ के बेटे की डेथ हो चुकी है. वाइफ इज स्ट्रगलिंग जबकि इंस्पेक्टर खुद को डिस्ट्रैक्ट करता है एक एक्टर की मिस्टीरियस डेथ को इन्वेस्टिगेट करने में. मूवी का एंड इतना अनएक्सपेक्टेड है कि किसी ने भी सोचा ही नहीं था, एंड हेंस इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज शोन बाय बॉलीवुड. सेकेंड यानी कि फोर्थ नंबर पर आती है तलवार मूवी, 2015 में आई, स्टारिंग इरफान खान, डायरेक्टेड बाय मेघना गुलजार, बेस्ड ऑन द इन्फेमस डबल मर्डर केस ऑफ नोएडा. इस मूवी ने एग्जैक्टली वही दिखाया जो हुआ था, यानी एंड में केस आज तक अनसॉल्व्ड है, एनहेंस इस केस को बंद कर दिया गया था. लेकिन अनसॉल्व्ड क्यों है ये आपको मूवी देखकर समझ में आता है. प्लस हु डजंट वांट टू वॉच अ गुड इरफान खान मूवी एनीवेज यार, सो गो एंड वॉच इट इफ You have not watched it yet. इसके अलावा बाकी की तीन मूवीज गानों के उस पार आ रही हैं. इसके बीच में अगर आप भी कुछ मिस्ट्री थ्रिलर्स बताना चाहते हो बॉलीवुड में, या गेस करना चाहते हो अगली थ्री मूवीज, then tell me. Instagram पर मिर्ची क्रिश, KRISH. This is मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. La virtua la murga. Mirchi, murga.
1: Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yes.
2: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट? तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छे सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
1: बट इसमें करना क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन।
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: मिलता है।
2: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी है, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
1: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे माँज सकते हैं।
1: Have you gone mad?
2: आपने पॉटी लगाई बच्चे की कभी?
1: Talking about?
2: और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा।
1: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग।
2: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
1: हेलो
2: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
1: हाँ, हु आर यू?
2: सर मनीष।
1: हु आर यू?
2: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
2: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं। मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है, आपका पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज बेसिकली हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बनाई हुई मिस्ट्री थ्रिलर्स के बारे में इन टुडेज पांच का पंच। मिर्ची सुन रहा आप, मेरा नाम क्रिश है। अभी तक इस लिस्ट में दो मूवीज के बारे में आपको बता चुका हूँ। नंबर पांच पर थी तलाश द आंसर लाइज विद इन और फोर्थ पर थी तलवार 2015 में आई इरफान खान मूवी। अब आते हैं नंबर थ्री पर, कहानी 2012 में आई ये मूवी स्टारिंग विद्या बालन डायरेक्टेड बाय सुजॉय घोष, जिसमें विद्या बालन प्लेड अ प्रेग्नेंट वुमन का रोल जो लंदन से कोलकाता अपने मिसिंग हस्बैंड को ढूंढने जाती है। सब जगह डेड एंड दिखता है, लेकिन एट द एंड क्या होता है? देखो वैसे तो ये मूवी काफी लोगों ने देखी हुई है, बट फॉर सम पीपल जिन्होंने नहीं देखी होगी, आई ऑब्वियसली डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर यू, सो गो एंड वॉच इट। फिर सेकंड पर आती है माय पर्सनल फेवरेट्स में से एक, अंधाधुन 2018 में आई ये मूवी स्टारिंग आयुष्मान खुराना, तबू एंड राधिका आप्टे डायरेक्टेड बाय श्रीराम राघवन। नाउ यू वांट टू मेक अ मास्टरपीस ऑफ अ मूवी, ब्रिंग सम ग्रेट एक्टर्स टुगेदर और फिर कमाल देखो। ये मूवी वही कमाल करती है। आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर विजुअली इम्पेयर्ड पियानो प्लेयर है, बट ही कैन एक्चुअली सी, और फिर वो एक वेब ऑफ मर्डर में फंसते ही जाते हैं। अगेन इस मूवी को स्पेशल बनाती है इस मूवी की जबरदस्त कास्ट। सो इन केस बाय चांस वंस इन अ रेयर मोमेंट्स आपने नहीं देखी है तो जरूर देखो, मजा आएगा। बाकी नंबर वन पे कौन सी मूवी है ये गेस करो, मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे बताओ। मिर्ची क्रिश के नाम से आई एम देयर, दिस इज मिर्ची, इट्स हॉट।

आई थिंक मिस्ट्री थ्रिलर्स बॉलीवुड का वो जॉनरा है जो वो काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। इसीलिए आज की पांच का पंच में वी आर टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड के एपिक पांच ऐसी मूवीज जो मिस्ट्री थ्रिलर से भरी हुई हैं। एंड हमने अभी तक बात करी पांचवें नंबर पर तलाश दी आंसर लाइज विद इन के बारे में, फोर्थ पर आई तलवार, थर्ड पर कहानी, सेकंड पर अंधाधुन। अब नंबर वन बताने से पहले ऑफकोर्स मेरा एक स्पेशल मेंशन आएगा, ये वो मूवी है जो कि आज की डेट में कल्ट क्लासिक है, गुप्त द हिडन ट्रुथ 1997 में आई स्टारिंग बॉबी देओल उर्फ लॉर्ड बॉबी एंड काजोल, डायरेक्टेड बाय राजीव राय। साहिल यानी बॉबी देओल का कैरेक्टर अरेस्ट हो गया है फॉर मर्डरिंग हिज स्टेप फादर, बट ही हैज टू प्रूव दैट ही समहाउ इनोसेंट। आगे जो जो होता है और क्लाइमैक्स में जो रिवील होता है वो आई थिंक सबको पता है, बट दिस मूवी इज एज्ड लाइक अ फाइन वाइन बिकॉज अब ये टाइमलेस क्लासिक है, हेंस द स्पेशल मेंशन। एंड अब आते हैं नंबर वन पे जो कि मुझे पता था काफी लोग गेस कर लेंगे, ऑफकोर्स दृश्यम 2015 की ये मूवी स्टारिंग अजय देवगन, तब्बू एंड श्रिया सरन, डायरेक्टेड बाय निशिकांत कमत। वैसे तो ये 2013 की मलयालम मूवी दृश्यम का ही रीमेक है, लेकिन एक मूवी कितनी सक्सेसफुल है ये आपको तभी समझ में आ जाता है जब 11 साल बाद भी उसका थर्ड पार्ट आने वाला हो और उसका एक डायलॉग इतने साल बाद भी हम सबको याद हो। यस, हम सबको पता है कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, हेंस दिस मूवी डिजर्व्स द फर्स्ट स्पॉट। अगर मैं कोई बहुत बढ़िया मिस्ट्री थ्रिलर मिस कर रहा हूं देन डू टेल मी अबाउट इट एंड वी कैन टॉक अबाउट इट ऑन एयर। मिर्ची क्रिश के नाम से आई एम ऑन इंस्टाग्राम, जाओ वहां पर बताओ, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम, दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
0: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
0: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
3: मिर्ची, इट्स हॉट।
4: दवे
5: दवे कौन?
4: The way you love me, आई हाय मर जावा।
5: खटखट, who that?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

ये कॉन्सेप्ट सही है यार। वीकेंड में एक बार सलमान खान आते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, पूरे हफ्ते तक उसी बात को लेकर घर में हंगामा होता है। And of course, I am talking about Big Boss, भाई। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। In case you're following it, तो आपको पता होगा, recently जब सलमान खान आए थे, तो he talked about काजी का behavior, because उन्होंने बीच में बोला था मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, mental issues हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, he was just playing a game। तो उन्होंने हंसी मजाक में बात निकाल दी, लेकिन जैसे ही वो इंटरेक्शन खत्म हुई सलमान खान से, रिति तिवारी वर्सेस काजी हो गया और उन्होंने काफी डिसरिस्पेक्टफुली काजी से बात करी रिति ने। अब ठीक है, मैं मानता हूं काजी की गलती थी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर हो गया था। हालांकि उसके बाद आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा कि कैसे वो अपने लाइफ के स्ट्रगल्स बता रही हैं कि कैसे उन्हें घर से सिर्फ पॉकेट मनी के नाम पर 25,000 पर मंथ मिलते थे, ऐसे में कोई कैसे गुजारा करे। मैम, आपको पता है कि आप काफी सारे लोगों की सैलरी इतनी है या इससे भी कम है, पता है आपको? नहीं, कोई बात नहीं, होता होगा। जब कम सैलरी मिलती है तो कई बार ऐसा ही होता, सैलरी तो हुई, ये पॉकेट मनी तो है नहीं, 25,000 जो आपको घर से मिल रहे थे सैलरी है, बट जिस तरीके से आपने बताया ना, आई जस्ट फील बैड अबाउट इट। तो अभी आप भी बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये जो बताना था भाई 25,000 मेरे को मिलते हैं, घर वालों ने इतनी हेल्प नहीं करी, वॉज इट राइट, जस्टिफाइड है कहीं ना कहीं से? इंस्टाग्राम पर हूँ मिर्ची क्रिश के नाम से, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम, कम लेट्स टॉक देयर, दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा, आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है. But really, tell us, how old were you when you made the song?
2: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था. सारे बादल नीचे आ चुके. And उस बीच में था ना, I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है, देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
1: अब Twinkle Twinkle Little Star और बाबा ब्लैक शीप के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स आउट.
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
5: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
6: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी.
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी? फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरी बीपी कभी मुझे सीरियसली लेती ही नहीं, क्या करूं?
1: तो प्रभु क्या है ना कि आप तुरंत ही हॉस्पिटल की ओर प्रस्थान करें, सीरियस लोगों को ना वहीं ले जाया जाता है।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं तीन
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

देखो मूवी का तो अभी कुछ पता नहीं है, रिलीज नहीं हुई है, इससे पहले गाना हिट करवा लें। अगर यही सोचा था देन दे आर एक्चुअली हाफ वे देयर। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन मूवी जो कि रिलीज होने वाली है 25 सितंबर को। कल ही इसका गाना आया है कॉल्ड ठुमक ठुमक एंड पीपल लव्ड इट। एक्चुअली क्या है ना, जब आप मूवी में तमन्ना भाटिया को नहीं भी लेते हो तब भी उनका एक डांस नंबर रखते हो जस्ट बिकॉज यू थिंक कि वो एक क्रूशियल पार्ट बन सकता है मूवी के रिलीज होने में, मूवी के हिट होने में। लेकिन यहाँ तो तमन्ना भाटिया मूवी में है, तब क्यों ना रखते और वो एडवांस में क्यों ना रिलीज करते। सो पीपल आर लविंग इट। हैव यू वॉच्ड इट और नॉट? मैंने आज देखा है, ये कल का रिलीज हुआ है। गो एंड वॉच इट, देन वी कैन टॉक अबाउट इट मोर अच्छे से। इंस्टाग्राम पे हूँ मिर्ची क्रिश के नाम से, KRISH। मुझे भी बताना कि कैसा लगा। लेकिन ये स्ट्रैटेजी अच्छी है भाई, तमन्ना भाटिया का गाना डाल दो, पहले से कुछ तो हिट हो। दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहा हूँ
3: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, आप ये पे नहीं कर रहे हैं? आपको
2: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
3: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
2: 23
3: एक सेकंड सर, आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
2: बिल आया था 2200 रूपए का।
3: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए है ना?
2: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
3: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
2: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
3: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
2: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात चिल्ला के भी की जाती है।
3: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
2: अरे फोन काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ, क्या कर रहा
3: हूँ? मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
2: चिल्लाने का क्या मतलब है?
3: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
4: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
2: हेलो
3: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
2: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
3: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
2: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
3: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज।
2: पागल
3: सर, सर, सर, सर, सर, सर, सर, सर, सर, सर, सर, सर, सर, मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है, मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
2: कुकड़ों को
3: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: खट खट,
7: कौन है?
6: अज्जू।
7: अज्जू कौन?
6: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए
7: खट खट, हु दैट?
5: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

तो अब ऑस्कर 2027 में देयर विल बी टू इंडियन मूवीज जो आपस में कम्पीट करेंगी। मिर्ची सुन रहा आप, मेरा नाम क्रिश है। येस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट इट एज वेल कि जब मूवीज शॉर्टलिस्ट हो रही थी फॉर ऑस्कर 2027, तब फाइनल एंट्री जो इंडिया की तरफ से गई थी वो थी गोंधल मूवी की, विच इज अ मराठी मूवी एंड इट इज एक्चुअली रियली गुड। मैंने काफी सुना है इसके बारे में, आई विल वॉच इट। लेकिन इसके अलावा एक और मूवी ने इन डिस्पाइट ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड क्वालिफाई कर लिया है। दिस मूवी इज कॉल्ड अंग। एक्चुअली नए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी मूवी को एक अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पर प्राइस मिला हो किसी फिल्म फेस्टिवल में, तो वो भी क्वालिफाई करेगी फॉर ऑस्कर्स। एंड इस मूवी के साथ यही हुआ। अंग इज अ मूवी जो कि नागालैंड से आती है। पूरी मूवी जो है वो कुन्याक विलेज की लैंग्वेज पर है, कुन्याक लैंग्वेज उसमें बोली गई है। सो आई डोंट थिंक ये हमें समझ में आएगी विदाउट सबटाइटल्स, लेकिन ये अब गोंधल के अगेंस्ट कंपीट करने वाली है फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। सो दोनों ही हिंदी में तो नहीं है बट दोनों ही इंडिया के हैं, सो वी शुड बी हैप्पी कि एक की जगह दो एंट्रीज गई हैं। लोग उदास होना छोड़ दो कि धुरंधर नहीं गई, कोई बात नहीं, ये मूवीज और ज्यादा अच्छे से कल्चर को दिखाती हैं। सो लेट मी नो अगर इनमें से कोई भी आपने देखी हो तो, एंड जेन्युइन रिव्यूज भी देना। मिर्ची क्रिश के नाम से इंस्टाग्राम पर हूं, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।

एक तो करण जौहर का इंस्टाग्राम बिल्कुल भी ये रिजेंबल नहीं कर रहे कि धर्मा प्रोडक्शंस ने कौन सा प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। दोनों चीजें पोल से पार जा रही। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। करण जौहर का अगर आप इंस्टाग्राम देखोगे आजकल जो भी पोस्ट डालते हैं ना, पीछे एक भोजपुरी गाना डाल देते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। एंड धर्मा प्रोडक्शंस ने अनाउंस करा एक न्यू प्रोजेक्ट जो कि ऑलमोस्ट बायोपिक होगा रामेश्वर नाथ काओ के ऊपर। यस, अब ये दोनों कितनी अलग अलग बातें हैं, बिकॉज रामेश्वर जी जो थे वो एक बहुत बड़े स्पाई थे। इनफैक्ट ही वॉज अ फाउंडिंग चीफ ऑफ रॉ। इनको अपॉइंट किया गया था 1968 में। फिर 1971 की वॉर में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन बांग्लादेश का लिबरेशन। सो इसके ऊपर धर्मा प्रोडक्शंस एक मूवी बना रहे हैं। लेकिन एक बार कोई मुझे ये समझा दे कि करण जौहर करना क्या चाह रहे हैं। उनका प्रोडक्शन हाउस लगा है, काम कर रहा सीरियस एकदम, और ये डाल रहे

भोजपुरी गानों के साथ अपने मॉडर्न आउटफिट्स में पिक, कुछ समझ नहीं आ रहा है. बट एनीवेज, दिस माइट बी अ ग्रेट मूवी. नो, मिर्ची क्रिश के नाम से इंस्टाग्राम पर हूं. KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माय नेम. अगर आपको समझ आए कि करण जौहर आजकल कहना क्या चाह रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो बताना मुझे. दिस इज मिर्ची. इट्स ऑल.

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कटे।
6: अबे कौन है?
5: उत्तपा।
6: उत्तपा कौन?
5: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
6: खट खट, हू दैट?
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: From a damsel in distress to a powerful queen.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइनों का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन होता है, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि अक्सर हमने हमारे हीरोइंस को प्यार करते, रोते और हीरो का इंतजार करते तो बहुत देखा है। लेकिन जब ये हीरोइंस खुद सवाल करती हैं, सिस्टम से लड़ती हैं और जरूरत पड़ने पर रिवेंज भी लेती हैं, तब कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और आज मेरे पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं ऐसी ही कुछ पांच फेमिनिस्ट फिल्मों की बात कर रही हूँ जिसमें द फीमेल प्रोटैगनिस्ट टुक द सेंटर स्टेज। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी सिस्टम मिडनाइट। अब नंबर दो पे बात करते हैं NH10 के बारे में, जो रिलीज हुई थी साल 2015 में। नवदीप सिंह की हार्ड हिटिंग थ्रिलर स्टारिंग अनुष्का शर्मा एंड नील भूपलम। माइंड यू, इस फिल्म को अनुष्का ने प्रोड्यूस भी किया था, दस मेकिंग हर प्रोडक्शन डेब्यू एज वेल। कहानी एक रोड ट्रिप की जो अचानक से टेरिफाइंग नाइटमेयर बन जाता है। NH10 में अनुष्का शर्मा एज मीरा एक वायलेंट इंसिडेंट के बाद सर्वाइवल के लिए फाइट करती हैं। ये फिल्म ऑनर किलिंग, पेट्रियार्की और रूरल पावर स्ट्रक्चर्स को ब्रूटली एक्सप्लोर करती है, जहां मीरा का कैरेक्टर विक्टिम बनके रुकता नहीं बट फाइट बैक करता है। चलो लिस्ट में नंबर तीन पे अब बात करना चाहूंगी अबाउट द फिल्म मॉम, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय रवि उदयावर, विच इज अ रिवेंज थ्रिलर स्टारिंग श्रीदेवी मैम, सजल अली, अक्षय खन्ना एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी। माइंड यू, ये फिल्म श्रीदेवी मैम की 300th फिल्म थी और इसी के साथ उन्होंने अपने सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत की थी इन दी इंडस्ट्री। कहानी का बैकड्रॉप फेल जस्टिस सिस्टम को दिखाता है, जब इन सारी चीजों से परेशान होके एक माँ खुद जस्टिस बन जाती है। फिल्म मॉम में श्रीदेवी अपनी स्टेप डॉटर के सेक्सुअल असॉल्ट के बाद उन गुनहगारों को सजा दिलाने के मिशन पर निकलती हैं। इन शॉर्ट, फिल्म का कोर है अ मदर्स लव, रेज एंड फाइट फॉर जस्टिस। तो बाबू मोशाय, अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी, देन डेफिनेटली यू शुड पुट इट इन योर वॉच लिस्ट। एंड टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, अपने आसपास के मर्दों को स्पेसिफिकली ये फिल्में जरूर दिखाएं। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और अब से कुछ ही देर में ऐसी ही दो और फिल्मों की बातें होंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
3: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। आई ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो हो गया। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
2: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: कौन है?
4: इशांत।
5: इशांत कौन?
4: इशांत गदाधारी भीम, इशांत।
5: खट खट, who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: क्या बताऊं अब, मेरे बंदे ने आज फिर से मुंह लटका रखा है।
1: अरे क्या कर रहे हो मैडम, जल्दी से उसका मुंह हुक से उतारो। मुंह को लटकाते नहीं, फ्रिज में रखते हैं। बाहर रहेगा तो डिकम्पोज हो जाएगा और पुलिस भी आसानी से ढूंढ लेगी।
2: I'm joking.

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La virtua la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Hello.
4: हाँ जी कौन?
3: हाँ जी कौन?
4: हेलो, किससे बात करनी है?
3: किससे बात करनी है?
4: भैया किससे बात?
3: अभी किससे बात करनी है?
4: भैया नंबर चेक करके
3: दोबारा मिला?
4: पागल
3: पागल
4: कौन बोल रहा?
3: अरे पता नहीं कौन बोल रहा था।
5: इको आ रहा है। इको।
4: हेलो
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो। जेल साले भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ।
4: भैया
3: नंबर देख के मिला।
4: हेलो
3: हेलो।
4: भैया क्यों परेशान कर रहा है?
3: किसी को पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है यहाँ पे फोन करे जा रहा है। अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा। नंबर आ गया मेरे पास।
4: पागल
3: कहीं का।
5: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
4: रवि
5: रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें इको नहीं आएगी। बहुत परेशान कर दिया आपने
4: भाई।
5: आप खत्म कर दो यार।
6: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
8: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
7: This initiative is driven by GWM.
9: Cut, cut.
10: Who that?
9: Jassi.
10: Jassi? Kaun si wali Jassi?
9: Jassi who has come, auntie ji?
10: Cut, cut. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: इशारे तेरे।
1: गुरु रंधावा दोनों ने मिलके गानों का जो मिक्सचर दिया दिल गार्डन गार्डन हो गया।
2: मस्त मौला गौरव।
1: बस मैं यही कहूंगा नेहा जी टोनी को ना अकेले में ऐसे गाने सुनाया करो तो लड़का ना थोड़ा और टैलेंट के साथ गाने लेके आएगा। फिलहाल मस्त मौला गौरव एक चीज और कहना चाहेगा कि जिस तरह से लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को ना और मोबाइल दे रहे हैं, ये आगे आने वाले टाइम में उनके लिए खतरा बन सकता है। इसलिए कतर की कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने CRA ने पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट की है।
3: #974
1: उन्होंने कहा है कि हमें अपने बच्चों को साइबर बुलिंग से और ऑनलाइन सेफ्टी के लिए थोड़ा सा साथ देना है। उनसे यही अपील की गई है कि हम अपने बच्चों को समझाएं साइबर बुलिंग किस तरह से होती है, किन चीजों से बचना है, हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं। जैसे कि साइबर बुलिंग की डेफिनेशन एग्जाम्पल दे दिए गए हैं। इंटरनेट पर अगर आप किसी को हार्म कर रहे हैं, एम्बेरस कर रहे हैं या थ्रेटन कर रहे हैं तो ये साइबर बुलिंग के अंतर्गत शामिल होता है। एब्यूसिव मैसेज या कॉमेंट्स करना, विदाउट परमिशन फोटोज और वीडियोज किसी भी इंडिविजुअल की शेयर करना, झूठी अफवाहें रूमर्स टाइप की चीजों को फैला देना, ये चीजों को बिल्कुल बंद कीजिए। फेक प्रोफाइल अकाउंट का मिसयूज करना ये मुसीबत में डाल सकता है। बच्चों को इस बारे में जरूर समझाइए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीइंग अ पेरेंट, बच्चों की बातों को सुनिए, उनको ब्लेम करना शुरू मत कीजिए। पहले उनको ध्यान से सुनिए, उनको रीअश्योर करिए कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनको समझाने का तरीका सही रखिए। बच्चों को बुलीज को रिप्लाई ना करने की सलाह देना शुरू कीजिए क्योंकि ये इंटरनेट की वर्ल्ड है, यहाँ पर आपको रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। एंड मैसेज स्क्रीनशॉट का प्रूफ सेव कर लीजिए, ब्लॉकिंग एंड रिपोर्टिंग टूल्स को यूज करिए एंड जरूरत पड़ने पर आप हेल्प भी ले सकते हैं। ये सारे मेजर स्टेप्स हैं, ये छोटी बातें हैं पर हम ध्यान नहीं देते। हम बच्चों को मोबाइल देते टाइम ये नहीं सोचते कि वो शायद साइबर बुलिंग का भी शिकार हो सकते हैं एंड हमें उन चीजों से इनको बचाना है। एंड साथ ही साथ मैं कहता हूँ हम लोग लकी चाम थे भाई, हमारे यहाँ ना हम वीडियो गेम लगाते थे तो पूरा का पूरा सेटअप करने में, टीवी के पीछे तार तक लगाने में हमें 2 से 3 मिनट लगते थे और मम्मी पापा अचानक से आ जाए तो निकालने में ही हमारी दुनिया जो है एकदम डोल जाती। लेकिन इन बच्चों को मोबाइल पे 1 मिनट के अंदर ये सारा स्क्रीन खट क्लियर कर देते हैं। सो प्लीज थोड़ा बच्चों पर ध्यान रखिए। मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा साइबर बुलिंग के चलते अपनी जिंदगी में कोई गलत स्टेप ले। 89.6 मिर्ची 1 मस्त मौला गौरव आपके साथ, मिर्ची इट्स हॉट।

0: इश्क करिया कर के लिए चढ़ा रहे हो, इन्वेस्टमेंट करिया कर इस पे भी कोई गाना बनाओ। हाँ जी मस्त मौला गौरव यही कहेगा, जरूरी है लाइफ में जब आप कुछ कमा धमा रहे हैं तो उसका एक अच्छा सा प्लान बनाइए कि मैं उसमें से बचा के कैसे इन्वेस्ट करूं। और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट टूल आपको चाहिए तो मैं कहता हूं भाई गोल्ड से अच्छा इन्वेस्टमेंट है नहीं, क्योंकि यहां जो रिटर्न मिल रहा है भैया वो पूरी दुनिया ने इसका कमाल देख लिया पिछले 5 सालों में।
1: गोल्ड अपडेट
0: अलफरदान एक्सचेंज के, अगर आप पैम्प गोल्ड रेट जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं अलफरदान एक्सचेंज में पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार राइट नाउ आपको मिलेगा 581 कतारी रियाल में, पैम्प 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार एट 2720 कतारी रियाल, पैम्प 10 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 5369, पैम्प 1 ounce गोल्ड लेडी बार 16597 कतारी रियाल एंड पैम्प 10 तोला गोल्ड बार 61627। पैम्प क्यों ही, ये जरूर हम आपको समझाना चाहेंगे। अलफरदान एक्सचेंज में मिलने वाला पैम्प जो है ना वो स्विट्जरलैंड से आया है एंड उसके कह सकते हैं सर्टिफाइड एजेंट हमारे कतर में अलफरदान एक्सचेंज है, और ये 24 कैरेट गोल्ड है जो आपको प्योरिटी का फुल टू गारंटी देता है। तो ऐसे में जब आप पैम्प खरीदते हो तो आपके दिमाग में यह है कि बेस्ट रिटर्न के साथ मेरे पास दुनिया का सबसे प्योर गोल्ड है। 89.6 मिर्ची 1 पर यह था गोल्ड रेट्स मिर्ची थॉट।
1: Stay ahead of today's gold rates with Alphardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
2: and earn Qatar Airways Avios today.
1: Visit our branches or download the app now.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: रेडी?
6: रेडी।
5: टू लर्न?
6: यस।
5: टू प्ले?
6: एब्सोल्युटली।
5: टू ग्रो?
6: विद मेज़राती।
7: The school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
6: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
7: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
8: Tanishq lekar aaye hain Garden of Gems, jahan color is the story behind every stone, made to be worn often. पहनिए चाहे क्लासिक डिनर ओकेजन के लिए, फैमिली फंक्शंस के लिए या अ रेगुलर ऑफिस डे, अवेलेबल अक्रॉस तनिष्क स्टोर्स इन कतार और ऑनलाइन एट tanishq.ae। विजिट अ तनिष्क स्टोर नियर यू एंड सी द कलर्स इन पर्सन। TNC सप्लाई।
9: खट खट। अगर कर।
10: अगर कर हूँ।
9: अगर करना है तो कर, वरना छोड़ दे।
10: खट खट, हू दैट?
4: Only on 89.6 Mirchi 1.
11: Mirchi, it's hot.

0: अब आएगी भैया, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। हाँ जी, मस्त मौला गौरव आपके साथ है। मौसम ने धीरे धीरे अपनी चाल बदली है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: देखिए, अगर ह्यूमिडिटी खत्म हो जाए तो आज ही के दिन मौसम अच्छा हो जाए। 52% के साथ ह्यूमिडिटी ज्यादा परेशान कर रही है। हवाओं की रफ्तार की बात की जाए तो ये उतनी नहीं है कि हमें अच्छा फील करा पाए, 11 किलोमीटर से भी कम। लेकिन दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचा 39 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम 30। ये अच्छी बात होती है कि गाड़ी जैसे आप बैठते हैं, एसी ऑन करते हैं, 2 मिनट के अंदर एसी का असर दिखने लगता है, जो कि पिछले दिनों नहीं हो रहा था। तो कुल मिलाकर मौसम में बदलाव आया, 39 मैक्सिमम 30 मिनिमम। एंड जैसे ही ये 20s में आना शुरू होगा आपको और अच्छी फीलिंग आएगी। लेकिन तेज रफ्तार हवाओं से इस ह्यूमिडिटी का गायब होना बहुत जरूरी है, ताकि हम टुकुर टुकुर इधर उधर घूमते रहें, देखते रहें एंड मिर्ची को एंजॉय करते रहें। मिर्ची इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
3: I like that song.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: मैं मेरी एक्स को भुला नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ?
1: अरे ब्रो, ये तो अच्छी बात है ना, अपनी एक्स का नाम अपना पासवर्ड बना ले, कभी भूलेगा ही नहीं ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: मेरा भी है ये रिश्ता काफी पुराना।
1: मस्त मौला गौरव,
0: फिलहाल घड़ी में 5:03 की तरफ घड़ियों का है जाना।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: जी और मस्त मौला गौरव आ गया इस घंटे खेलने, वो जिसे कहते हैं एक सवाल पूछता हूँ जहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, आपको बताना होता है कि अरे गौरव ये आवाज तो फला एक्टर की है। आवाज की आवाज सुनिए और बताइए किस एक्टर की आवाज है ये।
3: ये चिट्ठी लिखी थी मैंने, मैं तब रेडियो में काम करता था, उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनकी वैनिटी के बाहर बैठा हुआ था मैं, तो 6-7 घंटे हो गए, उनकी 8 फिल्म की शूट हो रही थी, तो बाद में पैकअप हो गया तो टाइम नहीं मिला उनके।
0: तो टाइम नहीं मिला, ये कौन सा एक्टर है जिसकी आवाज इस वक्त आप मिर्ची पर सुन रहे हैं? कान को थोड़ा तेज रखिए।
3: ये चिट्ठी लिखी थी मैंने, मैं तब रेडियो में काम करता था, उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनकी वैनिटी के बाहर बैठा हुआ था मैं, तो 6-7 घंटे हो गए, उनकी 8 फिल्म की शूट हो रही थी, तो बाद में पैकअप हो गया तो टाइम नहीं मिला उनके।
0: टॉपर का जवाब आ गया है, टॉपर मतलब यूसुफ भाई का जवाब आ गया है भाई, मतलब पलक झपकते ही भाई का आंसर आता है। एंड इनके साथ ही किसी लिख दिया सो इजी 5000 1896 पर आपको बताना है कि ये कौन सा एक्टर है जिसकी आवाज इस वक्त मैं रेडियो पर प्ले कर रहा हूँ।
3: ये चिट्ठी लिखी थी मैंने, मैं तब रेडियो में काम करता था, उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनकी वैनिटी के बाहर बैठा हुआ था मैं, तो 6-7 घंटे हो गए, उनकी 8 फिल्म की शूट हो रही थी, तो बाद में पैकअप हो गया तो टाइम नहीं मिला उनके।
0: 5000 1896 पर मस्त मौला गौरव इंतजार कर रहा है। एंड सच्ची बताइए अगर आपको पता है तो 5000 1896 पर आपको भेजना ही पड़ेगा कि ये कौन सा एक्टर है। वॉइस नोट में अपना जवाब दीजिए, कॉल मत कीजिए, सिर्फ अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हाय गौरव मैं ये बोल रहा हूँ और इसका जवाब ये एक्टर है। मिर्ची थॉट।

0: Milci.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो,
3: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
2: स्पीकिंग,
3: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपको। अच्छा मैडम, इसमें यह है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
2: जी।
3: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
2: बोल, कौन रहे हैं?
3: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
2: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
3: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
3: सही बात है,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे।
3: सही बात कह रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
2: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है।
3: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती, पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं,
2: हाँ, आप किस से बात कर रहे हैं?
3: मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
2: हेलो,
3: हाँ बोलिए।
2: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए।
3: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
2: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं।
3: हाँ?
2: नकली तरह से आप मेरे से
3: नहीं,
2: बातें
3: नहीं,
2: कर
3: नकली
2: रहे हैं।
3: नकली तरीके से क्या?
2: नहीं, असली मुझे दिख रही है। असली वाइफ से बात कर रहे हैं?
3: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार।
2: तो कोई बकौती है क्या?
3: नहीं, बात नहीं, तमीज सीख ले।
2: नहीं, तमीज नहीं, सुनिए, बिल्कुल नहीं सुननी है।
3: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया।
2: Oh my.
3: Okay. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: नीड टू सेंड मनी होम? मेक इट फास्ट, मेक इट सेफ, मेक इट अल्फाबन एक्सचेंज,
7: योर ट्रस्टेड चॉइस फॉर सेंडिंग मनी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज एंड गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स। विजिट आवर नियरेस्ट ब्रांच और डाउनलोड द अल्फाबन एक्सचेंज ऐप नाउ। फॉर असिस्टेंस कॉल और व्हाट्सएप 4453777।
8: खटखट,
9: हू देयर?
8: बनता
9: बनता हूँ।
8: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
9: खटखट, हू देयर?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. It's hot.

0: सुबह। रुकमार साहब, आपकी आवाज इतने साल बाद भी इतनी प्यारी लगती है।
1: मस्त मौला गौरव।
0: फिलहाल एक आवाज जो आपको लग रही है किसकी है वो खेल रहे हैं हम।
2: पहचान कौन?
0: यहाँ एक आवाज आती है, आपको पहचाननी होती है कि आवाज किसकी है।
3: ये चिट्ठी लिखी थी मैंने, मैं तब रेडियो में काम करता था, उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनकी वैनिटी के बाहर बैठा हुआ था मैं, तो 6-7 घंटे हो गए, उनकी एड फिल्म की शूट हो रही थी, तो बाद में पैकअप हो गया तो टाइम नहीं मिला उनके।
0: टाइम नहीं मिला लेकिन चिट्ठी संभाल के रखी हुई है, यही कहा था इस एक्टर ने। कौन है ये?
4: हाय गौरव, दिस इज आदिल अहमद एंड द वॉइस ऑफ आयुष्मान खुराना।
5: आयुष्मान खुराना गौरव जी।
0: ओके,
5: मेरा नाम सुनील है, मुंबई से।
6: हेलो हेलो, मस्त मौला गौरव, ये आवाज जो है अपार शक्ति खुराना के भाई जो है आयुष्मान खुराना, उसकी आवाज है। और मैं हूँ सदफ जहान और हम सुनते हैं रेडियो मिर्ची, क्योंकि है ये हॉट।
0: इट्स हॉट।
7: हाय गौरव, मैं औरंगजेब बोल रहा हूँ, विक्रांत मेसी।
8: गुड इवनिंग गौरव, यूसुफ हूँ। ये आवाज है आयुष्मान खुराना की। ओके, थैंक यू, बाय बाय।
9: हाय गौरव, दिस इज अभिलाष। द वॉइस नॉट दैट यू प्लेड इज ऑफ बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना।
10: हे गौरव भाई, हाय, हेलो, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग,
10: मेरा नाम प्रतीक है और इस वॉइस का सही जवाब है आयुष्मान खुराना। सो इजी, थैंक यू।
11: अस्सलाम वालेकुम गौरव भाई, माय नेम इज नसीम खान, द राइट आंसर इज आयुष्मान खुराना।
0: ओके,
12: हाय, गुड इवनिंग गौरव भाई।
0: गुड इवनिंग,
12: ये आयुष्मान खुराना की आवाज है।
0: बिल्कुल सही जवाब है, दिस इज आयुष्मान खुराना। लेकिन वैभव भाई, आप चूक गए और आपने विक्रांत मेसी बोल दिया, मिस हो गया ये आपका तो आंसर। एकलौता गलत जवाब आया है। इसके अलावा जिन लोगों ने लिख के भेजा है उनके भी नाम पढ़ देता हूँ, उन लोगों ने भी कोशिश की। हाँ जी, सबसे पहले आपके नंबर के लास्ट में आता है 0884, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, आपने नहीं भेजा वॉइस नोट। इसके अलावा एक और नाम जिन्होंने भेजा है, लव शाह भाई, आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, आयुष्मान खुराना है मेरे भाई। एंड इसके अलावा अगर बात करें तो एक और नाम जसलीन जी का, बिल्कुल सही, यस इट इज आयुष्मान खुराना। राकेश भाई जिन्होंने कहा आयुष्मान खुराना, बाला जिन्होंने कहा आयुष्मान खुराना एंड उनकी फिल्म भी आई थी बाला, वेल बिल्कुल सही जवाब था। एंड ऐसे ही खेला करिए मेरे साथ ताकि आपके कान रहे हमेशा शार्प, आप किसी की आवाज पहचान ले जनाब। मिर्ची जैक नाइट एंड जैस्मिन वालिया लेकर आ गए सोनू के टिट्टू की स्वीटी का ये गाना मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: मरकरी विनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून प्लूटो प्लूटो खत्म हो गया लेकिन कतर देगा दुनिया को अब नया प्लैनेट। यस कतर तैयार है दिसंबर में दुनिया को देने के लिए बबल प्लैनेट।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: हां जी हम आपको बता दें कतर कैलेंडर ने अनाउंस किया है साल 2026 के एंड में यानी कि दिसंबर के मंथ में QNCC में इस नए प्लैनेट के आने की तैयारी बबल प्लैनेट एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस। यस अब यहां क्या है भैया, यहां है लाइट्स कलर्स और बबल की एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में आपने ना सोचा है ना सुना है। हाँ जी तैयार हो जाइए इस बबल प्लैनेट के एक्सपीरियंस के लिए एंड ये ग्रैंड इवेंट होने वाला है QNCC में। ओपनिंग होगी 6 दिसंबर से एंड इसकी टिकट्स अक्टूबर से लाइव होने जा रही है। अब भी सही अपनी टिकट्स बुक करने की तैयारी कर लो, अक्टूबर आते ही हमें ये टिकट बुक कर लेनी है। यहाँ पर लोगों के लिए होने वाला है मल्टी सेंसरी फन, जाइंट बबल बॉल पिट, इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी रूम होगा, अंडर सी LED एनवायरमेंट बनेगा, 360 डिग्री प्रोजेक्शन के साथ ऑप्टिकल इल्यूजन ऐसे होंगे जो आप देख के कहेंगे वाओ दिस इज बबल प्लैनेट। बिल्कुल मिलाकर इस विंटर सीजन हमारी और आपकी लाइफ में विंटर में आइस होना हो लेकिन ये बबल की दुनिया में हम खो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तैयार हो जाइए और अपने दोस्तों यारों को जो प्लान कर रहे हैं उनको भी बता दीजिए कि जल्दी करो, दिसंबर में ही हमारे कदर में आ जाओ हबीबी, यहां होगा बबल प्लैनेट जो मिलेगा दुनिया को एकदम जदीद प्लैनेट के रूप में। तो आइए तैयार हो जाइए हबीबी, हम वेलकम टू कतर एक बार फिर से करेंगे अपने सारे दोस्तों को। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अभिजीत सावंत, जब भी आपके बारे में सोचते मोहब्बतें लुटाऊंगा यही याद आता है। बारिशों के लिए एक अलग गाना।

0: है।
1: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत। थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
5: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
6: बहुत कुछ होगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: गाना बजा दूं।
1: अरे आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, मिर्ची पे तो हम ऐसे ही बजा देते। हाँ जी, अपने प्यारे लिसनर्स के लिए जो भी उनके गाने होते हैं, वैसे तो मस्त मौला गौरव आपके साथ है, इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। 23 तारीख आ गई, 7 दिन के बाद मेरी जिंदगी का एक और खुशहाल दिन जब सैलरी आ जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपके पास है तो रेट्स अब आईपी पे देखिए, आपको एक कतरी रियाल के बदले इंडियन रुपीज मिलेंगे 26.22, 26 रुपए 22 पैसे भारतीय मुद्रा के। एक कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 90.38। अगर इसके बाद हम पाकिस्तान रुपीज की बात करें जनाब, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.11 पाकिस्तान रुपीज। तपाई को नेपाली रुपीज का रिश्वत दाजो, एक कतरी रियाल के बदले 41.88 का बल्चर रेट बाइनी। हाँ जी, 41.88 को नेपाली रुपीज खर्चा दाई घर भेजन लाई सही टाइम छो। अगर इसके बाद बांधु बांग्लादेशी टका बात करेगा, एक्टा कतरी रियाल के बदले 33.78 तो 33.78 एंड बाड़ीते पाड़ी जाओ, अच्छा रेट मिल रहा है दादा। एक्स नंबर पे मस्त मोलो गौरव आपके साथ 89.6 मिर्ची वन पर। आईपी से बहुत सारे फायदे हैं, एक सबसे बड़ा फायदा है पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर की सबसे कम फीस, ये हमारे खतर में आईपी ही ले रहा है। मिर्ची 8

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग रहे होते हैं, बस होते ही नहीं है, तो क्या करूँ?
1: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।

0: गोल। एक बार फिर से अरब वर्ल्ड पर फुटबॉल की खुमारी छाने वाली है मिर्ची घड़ी का टाइम 6:07।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और हम जिस खुमारी की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं अरेबियन गल्फ कप 2026। अरेबियन पेनिनसुला की जितनी टीमें हैं ना वो इसका हिस्सा बन जाती हैं। अरेबियन गल्फ कप एक बार फिर से आज से शुरू हो गया है एंड इस बार ये सऊदी अरेबिया में हो रहा है। वेल बता दूं ये 27th एडिशन है एंड सऊदी अरेबिया में होने वाले इस गल्फ कप के मैचेस, फ्री अरेबियन गल्फ कप के मैचेस आप देख पाएंगे हमारे कतर में 3-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में। यस, यहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही है जो कि 23 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक चलेगी, यानी कि हर मैच की स्क्रीनिंग होगी। एंड म्यूजियम ने कहा है कि ये लेवल 7 पर स्क्रीनिंग होने वाली है इस स्पोर्ट्स लाउंज में एंड फैंस के पास मौका है कि वो इस रीजनल टूर्नामेंट के स्पोर्टिंग एटमॉस्फेयर का पूरा मजा उठा पाएं। तो अगर आप उठाना चाहते हैं इसका मजा तो पहुंच जाइए अभी से ही, क्योंकि राइट नाउ ओमान का मैच चल रहा है इराक के खिलाफ एंड कह सकते हैं इस मैच में क्या स्कोर है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको बता दूं ओमान इराक के मैच के अलावा आपको आज देर रात एक और मैच का टेलीकास्ट देखने को मिल सकता है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। यस, सऊदी अरेबिया एंड कुवैत का मैच आज रात 9 बजे से यहां पर टेलीकास्ट होगा एंड अगर आप फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं दिस कैन बी योर प्लेस। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे दोस्तों, कोशिश कीजिए पहुंच जाइए फुटबॉल के इस जबरदस्त मैच का मजा लीजिए जहां पर इराक 1-0 से लीड कर रहा है ओमान के अगेंस्ट। एंड अगर हम अरेबियन गल्फ कप की बात करें तो लास्ट का जो चैंपियन है वो बाहरीन है, अब इस बार वो अपनी टाइटल डिफेंड कर पाएंगे या कतर उनसे छीनेगा या फिर कोई और, इसलिए तो इंतजार कीजिए। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा आपके दिमाग के घोड़ों को दौड़ाया जाए। तो एक सवाल है, जब कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था तो किस टीम ने थर्ड पोजीशन हासिल की थी? रिमेंबर माय क्वेश्चन, किस टीम ने थर्ड पोजीशन हासिल की थी, यानी कि थर्ड पोजीशन मैच में कौन जीता था? 5000-1896 नंबर है। अगर आपकी याददाश्त एकदम जबरदस्त तो मौका मिला है आपको, बता दीजिए मुझे 5000-1896 पर अभी भी यल्ला आंसर। एंड आंसर करने के लिए बताना आपको यह है कि किस टीम ने थर्ड पोजीशन मैच जीता था जब फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतार में हुआ था। 89.6 मिर्ची वन, सोचो इट्स ऑल। फिलहाल श्रुति राणे लेकर आई है कोई शहरी बाबू।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. Burga. La vilva la burga. Milci, burga.
1: Hello?
2: Hi. You... से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो।
2: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4198393।
3: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवीद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
1: वही मैं सुधरा था, मतलब।
2: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
1: हाँ जी।
2: कुकड़ू को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची। It's hot.
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: गोल्ड रेट कब बढ़ेगा कब गिरेगा, फेस्टिवल शॉपिंग के टाइम ये टेंशन क्यों?
7: विद तनिष्क्स बेस्ट गोल्ड रेट ऑफर, अपनी फेवरेट ज्वेलरी चूज करें और सिर्फ 20% एडवांस पे करके बुक कर दें। जब फाइनल परचेज कंप्लीट करेंगे तब बुकिंग डेट या बिलिंग डेट में से जो गोल्ड रेट लोअर होगा वही मिलेगा। मतलब फेस्टिव शॉपिंग प्लान कीजिए विदाउट पेइंग द फुल अमाउंट टुडे। ऑफर वैलिड अंटिल 8th नवंबर 2026 एट तनिष्क लूडू हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी। ओपनिंग सून एट अलवतन सेंटर एंड बरवा विलेज। तनिष्क, ज्वेलरी बाइंग मेड इजियर। TNC अप्लाई।
8: Who that?
9: जाहिर।
8: जाहिर? जाहिर हूँ।
9: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
8: खटखट, Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

89.6 मिर्ची 1 पर गाना खत्म हुआ और आपके साथ जुड़ गया मस्त मौला गौरव। और मैं आपसे कह रहा था कि फ्री अरेबियन गल्फ कप के मैचेस की स्क्रीनिंग हो रही है। अरेबियन गल्फ कप 2026 के मैचेस आज से शुरू हो रहे हैं, सितंबर 23 से 6th ऑफ अक्टूबर के बीच मैच का कह सकते हैं लाइव स्क्रीनिंग किया जाएगा 3-2-1 कतर ओलंपिक स्पोर्ट्स म्यूजियम में। अगर आप अरब वर्ल्ड के फुटबॉल फैंस को अपनी अपनी टीम्स के लिए चीयर करते देखना चाहते हैं तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस। जहां पर मैं आपको बता दूं सऊदी अरेबिया में मैचेस हो रहे हैं जिसका कतर में स्क्रीनिंग किया जा रहा है एंड दिस विल बी एट कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम। इसी से जुड़ा मैंने एक सवाल पूछा कि 2022 वर्ल्ड कप बोले तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में वो कौन सी टीम थी जिसने थर्ड पोजीशन पर जगह बनाई थी। वेल, सबसे पहले जवाब जिन्होंने सही दिया है दैट इज नीरज भाई। यस, नीरज जी ने बताया, हाय गौरव, दिस इज नीरज। थर्ड प्लेस टीम वाज क्रोएशिया इन 2022 फीफा वर्ल्ड कप। एंड सच कहूं जितनी स्पीड से इन्होंने दिया, इन्होंने कहीं सर्च नहीं किया। वेल, बता दूं 2-1 से मैच जीता था क्रोएशिया ने, मोरक्को की टीम को हराया था। मोरक्को जिन्होंने सरप्राइज किया था, पहली बार वर्ल्ड कप में आते ही सेमीफाइनल्स तक एंट्री मारी थी, लेकिन वहां पर फ्रांस से जरूर हारे थे और उस मैच को मैंने देखा था। बट सबका दिल जीता था मोरक्को ने एंड थर्ड पोजीशन मैच नहीं जीत पाए थे। लेकिन फिलहाल के लिए दिमाग में सब कुछ एक बार फीफा वर्ल्ड कप वाइब के साथ वापस आ गया। और अगर उसी वाइब को थोड़ा बहुत फील करना चाहते हैं 3-2-1 कतर ओलंपिक स्पोर्ट्स म्यूजियम अरेबियन गल्फ कप के लिए 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरी तरह हैं। लेकिन अब आपके उच्च या गड्डियां रखने के सपने का शौक पूरा कर सकते हैं हमारे जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, हम आपको बता दें अगर आप एक अच्छी गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक लेकर आया है एक बड़ा पब्लिक ऑक्शन। यस, इम्पाउंडेड व्हीकल्स का पब्लिक ऑक्शन होने वाला है। अब आप सोचेंगे इम्पाउंडेड व्हीकल्स तो जब्त हो जाते हैं उनको कैसे खरीदें? अरे खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदने से पहले अगर आपके दिमाग में 100 सवाल आ रहे हैं, पता नहीं गाड़ी कैसे कंडीशन में होगी, तो आपके पास मौका है। ऑक्शन से पहले जाकर इन गाड़ियों को आप देख सकते हैं। सितंबर 30th से लेकर अक्टूबर 1st के बीच सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच आपको जाना है व्हीकल इंपाउंड यार्ड इंडस्ट्रियल एरिया स्ट्रीट 52 में। याद रखिएगा, यहीं पर आप जाकर इंडस्ट्रियल एरिया स्ट्रीट 52 में व्हीकल इंपाउंड यार्ड जो है यहीं जाकर आप गाड़ी को देख सकते हैं। फिर क्या है, जैसे ही 4 अक्टूबर से इसकी ऑक्शन शुरू हो, आप अगले 2 हफ्ते के लिए रोज शाम को 3 बजे से 6 बजे तक यहां पर डायरेक्ट ऑक्शन पे जाकर गाड़ी को ले सकते हैं। अब मतलब ये है कि मान लीजिए आपका सपना है कोई बड़ी गाड़ी हमारी हो और यहां पे वो गाड़ी दिख जाए, पहले जाके गाड़ी को फील कर लो, उसके बाद ऑक्शन पे लग जाओ, एंड अगर लकी हुए तो गाड़ी आपकी हो जाएगी। आप कहोगे गौरव ने बताया था यार, अपना तो बहुत बड़ा फायदा हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बदले में एक बढ़िया बकलावा या फिर कोई और ट्रीट दे देना यार। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्मोला गौर ने बात बताई, क्योंकि ना हर इंसान का सपना होता है अच्छा घर और बढ़िया चमकदार गाड़ी। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
7: Khat khat.
8: Who that?
7: Akbar.
8: Akbar who?
7: अरे अखबार बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
8: खट खट हु दैट।
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

ocean gives me shandar pradarshan. यस, अगर हम मेडल टैली की बात करें तो कतर इंडिया से भी ऊपर है, 11वीं पोजीशन पर विद 2 गोल्ड मेडल्स 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, 4 मेडल के साथ कतर है इस वक्त 11वीं पोजीशन पर। वहीं इंडियन टीम 1 गोल्ड मेडल जो क्रिकेट से आया उसके साथ, 5 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 12 मेडल्स टोटल, एंड हम हैं नंबर 13 पर। बड़ी बात यह है कि नंबर 1 की पोजीशन पर चाइना बरकरार है विद 48 गोल्ड मेडल्स। अगर जापान की बात करें 15 गोल्ड मेडल्स के साथ सेकंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया 8 गोल्ड मेडल के साथ नंबर थर्ड, कजाकिस्तान इज ऑन नंबर 4th एंड थाईलैंड विद इक्वल मेडल लाइक इंडिया, 12 मेडल है लेकिन 5 गोल्ड के साथ नंबर 5 पर। वेल, पिछली बार की बात करें तो इंडियन टीम ने 4th पोजीशन पर अपना कारमा खत्म किया था, लेकिन इस बार मेडल टैली में टॉप 10 में आने में इंडिया की एकदम मशक्कत करनी पड़ रही है। कोई नहीं आएगा, पर बड़ी बात यह है मीरा भाई चानू ने एक तरह से इंडिया के लिए बहुत सालों बाद सिल्वर मेडल जीत लिया है। ये एक बहुत अच्छी चीज है जो मैं कहता हूं कि माहौल बना रही है, धीरे धीरे आएगा, टेंशन नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है आएगा मेडल आएगा और इंडिया भी टॉप 5 में पहुंचेगा, उसके लिए इंतजार कीजिए। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि इतना आसान नहीं है मेडल जीतना, एकदम दमखम लगाना पड़ता है। 89.6 मिर्ची 1 पर फिलहाल विमेंस क्रिकेट टीम के लिए तालियां हो जाए जिन्होंने पहले गोल्ड मेडल के साथ इंडिया को एटलीस्ट टॉप 15 में बनाए रखा है। मिर्ची इट्स हॉट, मेंस टीम किसी तरह तो जापान से जीते हो, बाकी के सारे मैच जीतना भैया। अब बात आई है क्रिकेट की तो देखिए जर्सी फिल्म का गाना महरम सचिन टंडन की आवाज में।

0: भट्ट
1: भट्ट अरे भट्ट हूँ
0: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है
2: खट खट हू दैट
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: सर वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है, कैसे करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर। मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ।

0: एक बार ही नहीं, बार बार आओ यार। हम तो रेडियो पे सबको बुलाते हैं, बस आपको कान ट्यून करना होता है, 89.6 ला के कान में अपना घुसेड़ देना होता है अपना हेडफोन, उसके बाद आप मिर्ची के एकदम करीब। लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं तो घड़ी का टाइम भी आपको देखना नहीं पड़ता है, 7:07 होने को आ रहे हैं।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: चलिए ये मस्त बोला गौरव एक काम की बात बताएगा कि कतर की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक ट्रेवल एजेंसी का लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया है उनके वायलेशन की वजह से। यस, सोशल मीडिया पर अनाउंस किया गया है, कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने क्लोज कराया है मोहम्मद नूर टूर्स एंड ट्रेवल्स को, क्योंकि इन्होंने एक वायलेशन किया था जिसकी वजह से लॉ नंबर 3 of 2025 लगा एंड ट्रेवल एंड एयर कार्गो एजेंसीज पर यह कार्रवाई की गई। वेल, बता दें कतर में कुछ भी आप रूल एंड लॉज के खिलाफ करते हैं तो आप पर यह कार्रवाई होती है, तो आपको यह ध्यान रखना है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं रूल्स को फॉलो करें एंड कोशिश यही करें किसी भी तरह का झांसा कस्टमर्स को फंसाने का, उनके साथ स्कैम करने का कोई भी दिमाग में आइडिया आप दूर दूर तक ना लाएं, क्योंकि ये अभी भी कतर है, यहां कुछ भी करोगे रूल के खिलाफ तो सीधे आएगा फतूरा और लगेगा ताला। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट। बादशाह हितेन शर्वी यादव का बैंगर गाना मिर्ची पर।

Man. Yeah. भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौको हंस मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La virpa, la burka.
1: Milci, burka. Burka. हेलो
2: हाँ जी बोलिए
1: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
2: आप बोलिए ना
1: कॉल आपने किया आप बोलिए
2: कॉल मैंने किया हेलो
1: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
2: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
1: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
2: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
1: नींद में क्या
2: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
1: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
2: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखिए चलिए हेलो हाँ बताइए
1: तेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
1: हेलो
2: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
1: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
2: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
1: फोन नहीं कर रहा अभी
2: मैं देख बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गया मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से है ना मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
1: चप्पल
2: पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
1: जीना आराम कर दिया तुम
2: जीना बता रहा हूँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
1: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
2: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ सारी बाहर आ रही है तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: इट पटाक
5: नहीं बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है
7: कैसे रुक सकता है
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
3: 89.6 FM Mirchi 1 It's hot.

0: मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के बाद अब हम देने जा रहे हैं, यानी कि कदर देने जा रहा है एक और प्लेनेट। मस्त मौला गौरव यहाँ आपको बताना चाहेगा कि दुनिया को एक नया प्लेनेट दिखाएगा कतर दिसंबर में, क्योंकि कतर कैलेंडर लेकर आ रहे हैं बबल प्लेनेट एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: अब ये बबल प्लेनेट है क्या, मैं आपको बता दूं, ये एक बड़ा ग्रैंड इवेंट है जो कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में इस साल के एंड 6 दिसंबर को आने वाला है। यस, एंड इसकी टिकट्स आपको अक्टूबर से ही मिलेंगी। इस दुनिया के अलग से प्लैनेट में क्या क्या होगा, यहाँ पे लोगों को मिलने वाली है मल्टी सेंसरी इवेंट एंड जाइंट बबल बाथ बॉल पिट, वर्चुअल रियलिटी रूम, अंडर सी एलईडी एनवायरनमेंट एंड 360 डिग्री प्रोजेक्शन, और इसके साथ ऑप्टिकल इल्यूजन की एक दुनिया जो आपको इस बबल प्लैनेट पे खोने नहीं देगी। वेल, कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूँ, 6 दिसंबर से ये हमारे कतर में शुरू हो जाएगा, तो इस विंटर सीजन फैमिली के साथ ये नया एक्सपीरियंस लेंगे हम बबल प्लैनेट में। लेकिन उसके लिए टिकट्स तो बुक करनी पड़ेगी, तैयार हो जाइए, अक्टूबर में हाथों में मोबाइल होना चाहिए और टिकट बुकिंग का बस लिंक, उसके बाद दे धकाधक अपने बुक कर लेनी टिकट, ताकि हम दुनिया के इस नए प्लैनेट पे चलें और बच्चों को अपने इस ढेर सारी मस्ती भरे पल का यादगार लम्हा दें। लेकिन याद रखिएगा, बबल से हमको अपने बचपन का वो खेल याद आता है जब घर में सर्फ आता था और उससे मिला के हम लोग फूक फूक के बबल बनाने की कोशिश करते, तो इस चक्कर में मम्मी से कितना पीटते थे क्योंकि इतना सर्फ बर्बाद किया यार। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

अगर आपको भी उचिया गाड़ियां रखने का शौक है लेकिन बजट है कम, तो हम दे रहे हैं एक सोल्यूशन। क्योंकि हमारे कतर में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक लेकर आए एक बड़ा पब्लिक ऑक्शन इंपाउंडेड व्हीकल्स का। यस, ये इंपाउंडेड व्हीकल्स जो किसी वजह से, लीगल वजह से गाड़ियों को जब्त किया जाता है, वो गाड़ियां अच्छी कंडीशन में होती है और आप अगर उनको खरीदना चाहते हैं तो मौका आपके पास है। एंड बड़ी बात यह कि आपको लगता है नहीं यार ये गाड़ी पता नहीं कैसी होगी, तो आप ऑक्शन से पहले इन कार्स को देख भी सकते हैं। सितंबर 30th से अक्टूबर 1st के बीच सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे के बीच आपको जाना पड़ेगा इंपाउंडेड व्हीकल्स के उस कंपाउंड में जो है इंपाउंड यार्ड इंडस्ट्रियल एरिया स्ट्रीट 52 पर। याद रखिए, यहां जाकर आप पहले गाड़ी देख लीजिए और फिर 4th ऑफ अक्टूबर से जब ऑक्शन शुरू हो तो हर दिन शाम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको वहां पहुंच जाना है और ऑक्शन में अपनी तरफ से पूरी बोली लगानी है। लकी हुए तो गाड़ी मिल जाएगी कम पैसे में, आपकी बेहतरीन गाड़ी का सपना पूरा हो जाएगा। बट एक बात याद रखिए, इंसान ना दो चीजें हमेशा अच्छी चाहता है, एक अच्छा घर और एक अच्छी गाड़ी। मौका आ गया है, कम पैसे में अच्छी गाड़ी ले लो सर। एंड मस्ट मोलोवर को थैंक यू कह दो जिसने ये बात याद दिला दी है। गाड़ी की ट्रीट तो हम आपसे लेके रहेंगे। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी, मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM Mirchi 1.
4: It's hot.

What a vibe, what a song, and यही बॉम्बे रॉकर्स हैं जिन्होंने गाया था तेरी तो तेरी ता हमेशा याद सतावे. वेल, इतने सालों बाद भी इनके एनर्जी का लेवल वही का वही है. फिलहाल के लिए हमारे एनर्जी का लेवल थोड़ा कम हो गया भाई, जाने का टाइम आ रहा है. तो दूंगा वाणी को आराम करूंगा आपको ठरवा में प्रणाम, एंड जाने से पहले दिलाऊंगा इस बात का ध्यान कि जिंदगी में हर चीज आपके मुताबिक हो ये जरूरी नहीं है. कभी कभी सिचुएशन के मुताबिक हमें ढलना पड़ता है, एंड ऐसे ही अगर आप एक प्लेयर के रूप में देखेंगे तो खिलाड़ियों को भी करना पड़ता है. इस बार इंडिया एशियन गेम्स में थोड़ा स्ट्रगल कर रही है एंड मेडल्स कम आए हैं, बट आई एम वेरी श्योर अब जब हम सब मिलकर उन्हें चेयर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो खेल बदलेगा दोस्तों और मेडल टैली पर हम टॉप 5 में आएंगे. इसी उम्मीद से कि अब आने वाले हर मैच में इंडियन प्लेयर्स कमाल करेंगे, धमाल करेंगे, एंड कोशिश यही करेंगे कि टॉप 5 में कैसे आ जाए, मस्त मौला गौरव निकलता है. लेकिन आपको इतना याद दिलाता है कि इसीलिए हम कहते हैं मेहनत और प्रैक्टिस रोज रोज करनी चाहिए, ये एक दिन का काम नहीं है. चलिए जी, हम तो रोज ही करते हैं मेहनत से काम, एंड उसके बाद मा सलाम मिर्ची थॉट.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा, आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है। But really, tell us, how old were you when you made the song?
3: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था. सारे बादल नीचे आ चुके. And उस बीच में I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है. देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
2: अब Twinkle Twinkle Little Star और बाबा ब्लैक शीप के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स आउट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग रहे होते हैं, बस होते ही नहीं है, तो क्या करूँ।
1: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: कुछ कॉम्पोजिशंस ना आपको ऐसे अंदर तक हिला के रख देती हैं। ये है वन ऑफ देम, शंकर महादेवन की आवाज में अभी आपने सुना सपनों से भरे नैना।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। एंड यू नो, जब सच में किसी चीज के लिए पैशन होता है ना, वी गिव आर ऑल टू दैट थिंग। सारा जमाना कह रहा होता है तुमसे नहीं होगा, लेकिन तुम अपना पूरा झोंक देते हो अपने आप को उसके अंदर और फिर करके रहते हो। एंड आई नो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बहुत लेट भी मिलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल वहां तक पहुंच के हमारा मन करता है कि बस यार बहुत हो गया, अब गिविंग अप वाले मूड में आ जाते हैं हम। पर बस वही नहीं करना है, थोड़ा सा चलते रहो एंड यू विल गेट इट। अगला जो मैं आपके लिए गाना लेकर आई हूँ ना, वो भी यही फीलिंग दर्शाता है। सो बेसिकली चक दे इंडिया के जो गाने लिखे गए थे, उनका मोस्टली डिवोशनल या पेट्रियोटिक से ज्यादा ऐसा फीलिंग होता था कि आई हैव गिवन इट ऑल, मैंने सब न्योछावर कर दिया इसके ऊपर। और ये भी वो फीलिंग दर्शाता है गाना। और जिन्होंने ये गाना गाया है ना, कृष्णा, यू नो कृष्णा ने बहुत कम गाने गाए हैं, आई लव हिज वॉइस सो मच कि मुझे लगता है कि मुझे इनकी आवाज में और गाने सुनने हैं अभी। इन्होंने गाने गाए हैं लाइक रब्बा फ्रॉम मुसाफिर, तेरी याद साथ है, नमस्ते लंदन, सोनियो राज से, और ये गाना इन्होंने गाया अलॉन्ग विद सलीम मर्चेंट। But what a beautiful song. सुनो इसको, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। Stay tuned, it's hot.

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vedva la burga. Milci, burga.
2: Hello?
3: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,9,83।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार, अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं, आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका
2: वही मैं सुधर रहा था, मतलब मिर्ची सारी लगा।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339,39। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: रिप्राइज वर्जन जो है ना गानों के फिल्मों के अंदर, उनकी एक अलग ही लीग होती है। दिस वॉज फ्रॉम ए दिल है मुश्किल बोलिया रिप्राइज, अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में। सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची कैफे।
0: एंड यू नो, हम लीग की बात कर रहे हैं, गानों की बात कर रहे हैं, एक्टर्स की भी बात करते हैं। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता, आपके अपने फेमस रहमान डकैत अक्षय खन्ना, आपको रहमान डकैत की तो उनकी पूरी इमेज याद है राइट? आपको दिल चाहता है वाला सिद्धार्थ सिड याद होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने ये फिल्म देखी है, 1998 की फिल्म, दैट वाज कॉल्ड डोली सजा के रखना फॉर अक्षय खन्ना। यू हैव टू वॉच दैट फिल्म, आप माइंड ब्लो हो जाएंगे इनकी एक्टिंग, इनका डांस ऑन द ट्रैक कॉल्ड खेवारे खेवा। अगर आपने नहीं देखा है, यू मस्ट वॉच दैट फिल्म फॉर योर रहमान डकैत आर अक्षय खन्ना। एंड दिस ट्रैक जो मैं अभी आपके लिए लेकर आ रही हूँ, सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, ये ना मिलेनियल्स को तो डेफिनेटली याद होगा, इतना सुकून भरा रोमांटिक गाना होता था ना ये, मुझे बहुत पसंद था और ये मुझे ऐसे चलते फिरते कहीं सुनाई दे गया एंड आई वाज लाइक ओह गॉड आई हैव टू प्ले इट फॉर यू ऑल। सुनो इस गाने को, अभी आती हूँ वापस, सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष।
6: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
7: जबरदस्त ट्रैक्स।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM,
9: मिर्ची वन।
10: दिल को

0: कभी आपने छोटे बच्चों के साथ डील किया है? आप जितना भी उनको मना करोगे कि बेटा इधर से गिर जाओगे, उधर नहीं जाना है, तब भी वो वहीं जाएंगे और गिरेंगे। चाहे आप उनको कितना भी मना करो कि स्विच बोर्ड पे हाथ नहीं डालना है, वहां करंट आ सकता है, पर वो वही करेंगे। तो जो हमारा दिल है ना, इट्स जस्ट लाइक छोटा बच्चा। आप रोक लो 1000 बार पर दिल वही करेगा जो उसने करना है।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और दिमाग और दिल की ये जो रंजिश है ना आपस में, दिमाग कितना भी समझा ले, दिल हार नहीं मानता और बाज नहीं आता। रत्ती भर भी बाज नहीं आता, करके रहता है जो करना है, और फिर चोट खाता है, और फिर दिमाग से पूछता है अब क्या करूं भाई, फंस गया। सो दिस साइकिल विल गो ऑन फॉरएवर। अब जैसे कि ये गाना, यू नो, उदित नारायण इसमें बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि जैसे ही मैं घर से निकला, रास्ते में देखा कि वो बाल बना रही थी और मेरा दिल आ गया उस पे। सो यू नो, ये तो चलता ही रहेगा भाई, कितना भी समझा लो तुम। सुनो इस गाने को यहीं पर, फ्रॉम द फिल्म कॉल्ड पापा कहते हैं। लिसन टू दिस एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
3: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो क्या। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
2: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: दोस्ती का गुस्सा है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
5: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
6: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
7: खूब मिलेगा, मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: यार ये फिल्म ना चीनी कम से ये गाना लेकर आई हूँ आपके लिए, जाने दो ना, श्रेया घोषाल की आवाज में आपने सुना
1: मिर्ची कैफे।
0: मिर्ची कैफे इज द शो, मेरा नाम है पारुल। डू यू नो चीनी कम जिसके डायरेक्टर हैं आर बल्की, उन्होंने लिखी थी अमिताभ बच्चन के लिए, और ये पूरी जो फिल्म है इट इज जस्ट अबाउट द एज गैप बिटवीन द एक्टर एंड द एक्ट्रेस। सो अमिताभ बच्चन प्ले कर रहे हैं रोल बुद्धदेव गुप्ता का, जो कि लंदन के शेफ हैं, और एक्ट्रेस हैं तब्बू, ठीक है, जो 30 साल उनसे छोटी हैं। एंड फनीएस्ट पार्ट इन दिस फिल्म वॉज कि तब्बू के जो पापा हैं, जो प्ले कर रहे हैं परेश रावल, वो अमिताभ बच्चन यानी बुद्धदेव गुप्ता उस कैरेक्टर से छोटे हैं एज में, समझ रहे हैं आप ये डायमेंशन। और ये गाना, ये भी समझो कि अभी अभी मैंने चलाया आपके लिए जाने दो ना, मुझे तो जाने दो ना, इसका मतलब ये भी है कि अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। एंड मुझे बहुत बहुत मजा आता है आप सबके डीएम्स पढ़कर, मैसेजेस पढ़कर, आप जो गाने बोलते हो वो मैं लाने की कोशिश करती हूँ। आई होप निशांत एंड विनीत आपको अच्छे लगे होंगे, आपके गाने आज मैंने अपनी प्लेलिस्ट में प्ले किए हैं। एंड आई लव दैट यू राइट टू मी, मैं सबका जवाब देती हूँ। आप मुझे डीएम कर सकते हो paruls.world इंस्टाग्राम पे मैं मिलूंगी, और मेरा स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर है 7045983983। आप मुझे बता सकते हो आपको ये गाने कैसे लगते हैं, शो कैसा लगता है, आपको कौन सा गाना सुनना है, ये भी आप लिख के भेज सकते हो। एंड आई एम सॉरी, कुछ लोग हैं जिनके गाने मैंने प्ले नहीं किए हैं इस एपिसोड में, आई होप मैं अगली बार आप तक वो पहुंचा सकूं। बट यस, अभी मुझे जाने दो ना, और अगला गाना आपके लिए छोड़कर जा रही हूं मिर्जापुर द मूवी से। ये एक्चुअली गाना बहुत पुराना है, नुसरत फतेह अली खान साहब के जमाने का गाना है, बट दिस इज अ ब्यूटिफुल रेंडिशन। इसको आप सुनो और अपना ढेर सारा ख्याल रखो, और सुनो जिससे प्यार करते हो उसे बताते रहो, कोई बात नहीं अगर 15 साल से साथ रह रहे हो, 20 साल से रह रहे हो, 1 साल से रह रहे हो, यू हैव टू फाइंड वेज टू टेल पीपल दैट यू लव देम, शर्माना नहीं है, और फॉर ग्रांटेड तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय।

मुझे लगता है हर किसी के अंदर एक बावर्ची होता है। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। और सबने ना कभी कुछ ना कुछ तो कुक किया होता है, फिर चाहे वो हॉस्टल में तुम्हारे 2 मिनट नूडल्स हो या फिर चाय। तो हम सब कहीं ना कहीं तो बावर्ची होते ही हैं। इसी टाइटल को रखकर ऋषिकेश दा ने उस जमाने की एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म बनाई विद राजेश खन्ना एस बावर्ची एंड जया बच्चन जी। इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, एके हंगल साहब, असरानी साहब, दुर्गा खोटे। तो आज ना इसी मूवी की कहानियां बताऊंगी जो कि मैं कुक नहीं करके आई हूँ, वो सच में ये खट्टी मीठी किस्से एक्चुअली में ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म हुए थे। शुरुआत करेंगे फिल्म की कास्ट और क्रेडिट से। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
2: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इससे पहले तक किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना ऋषिकेश दा, राजेश खन्ना, जया भादुड़ी जी की फिल्म बावर्ची की बात हो रही है। आपको पता है इससे पहले किसी भी इंडियन फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था कि कास्ट और क्रेडिट को ना दिखाया जाए। हर फिल्म में जैसे क्रेडिट दिए जाते हैं ना, ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें क्रेडिट्स फिल्म के शुरुआत में नहीं दिए गए। फिर क्या किया गया, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो पता होगा, और अगर नहीं देखी है या फिर बहुत पहले देखी थी तो मैं याद दिलाऊंगी। कम राइट बैक विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: हाउ इज द जोश?
6: हाय सर।
5: हाउ इज द जोश?
6: हाय सर।
7: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM Mirchi 1 It's hot
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये यूनिक आइडिया फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश दा का था। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची, जो कि ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी। राजेश खन्ना थे, जया बच्चन थी और भी बहुत सारे एक्टर्स थे। अब इस फिल्म में पहली बार ऐसा हुआ कि क्रेडिट्स नहीं दिए गए, यानी देयर वर नो टाइटल कार्ड्स। तो फिर क्या किया गया था, इसमें अमिताभ बच्चन जी के वॉइस ओवर ने हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था और ये यूनिक आइडिया पहली बार किसी फिल्म में देखा गया था। अच्छा, अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल में से क्यों उन्होंने टाइम निकाला, ये अभी बताऊंगी श्रेया के साथ। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अभिजीत सावंत, जब भी आपके बारे में सोचते मोहब्बतें लुटाऊंगा यही याद आता है। बारिशों के लिए एक अलग

0: वन की फिर वो झड़ी है।
1: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत। थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
4: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के?
5: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
7: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
8: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

टाइडल्स के साथ एक्सपेरिमेंट ये पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। इट वॉज द फिनोमिनल ऋषिकेश मुखर्जी जिन्होंने ये सोचा भी और अपनी फिल्म बावर्ची में किया भी। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही थी द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची की, ऋषिकेश दा की डायरेक्टेड, जिसमें बावर्ची बने थे राजेश खन्ना, उनकी लव इंटरेस्ट बनी थी जया बच्चन जी। और इस फिल्म में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कास्ट एंड क्रू के नाम नहीं दिए गए थे, बल्कि एक बहुत यूनिक आइडिया सोचा ऋषिकेश दा ने, एंड दैट वाज कि हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर यूज किया गया। अब अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, तो ऋषिकेश दा उनसे ये फेवर मांगने में थोड़ा कतरा रहे थे। उन्होंने जया जी से वाइल शूटिंग द फिल्म ऐसे ही मुस्कुरा के बात बात में कह दिया कि काश अमित ये काम कर पाता। ये बात जया जी ने घर जा करके अमित जी को डिनर पे बताई। अमिताभ बच्चन और जया जी के लिए ऋषिकेश दा फादरली फिगर थे, हमेशा से एक बड़े भाई थे। जैसे ही अमित जी ने ये बात सुनी, वो ऋषिकेश दा के घर पहुंच गए और उनसे नाराज होके कहा, दादा ये बात आप मुझसे आके नहीं कह सकते थे, आपको जया की जरूरत पड़ी इसके लिए। ऋषिकेश दा ने मुस्कुरा दिया और उसके बाद तो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। पुरानी जीन्स पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, तो बस वापस आओ श्रेया के साथ।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं।
2: oh, no.
0: फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ना ये दोनों डेटिंग फेज में थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी बावर्ची की थोड़ी देर पहले। तो इस फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन और जया जी ना एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, वो प्यार में धीरे धीरे पड़ रहे थे। तो क्या होता था कि अमित जी जया जी को मिलने फिल्म के सेट पे जाते थे। अब सेट पे तो उनको उस टाइम के सुपरस्टार काका यानी राजेश खन्ना भी मिलते थे, जिन्हें अमिताभ बच्चन थोड़े अखरते थे। अच्छा, काका उस टाइम पे अपने स्टारडम के खुमार में भी थे। अमिताभ बच्चन बिजी जरूर थे, उनके पास फिल्में बहुत थीं, लेकिन जनरली उनकी फिल्में इतनी खास चल नहीं रही थी। ऐसे में काका उनको ताने मारा करते थे, रिमार्क्स पास किया करते थे। क्या अमिताभ बच्चन को गुस्सा आया या फिर उनकी तब की गर्लफ्रेंड जया जी को, बताऊंगी थोड़े से गानों के बाद। मुझे बहुत मजा आता है आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में, क्योंकि फिर मुझे यकीन होता है कि आप वापस यहाँ होंगे। सो कम राइट बैक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
2: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
1: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
3: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
1: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो। भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
4: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

काका बोले तो राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन जी को बहुत सारे ताने मारते थे। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है ऋषिकेश दास द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। तो मैं कहाँ पे छोड़ के गई थी बात? हाँ, मैं ये बता रही थी कि ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन एंड जया जी वर डेटिंग। वो एक दूसरे को मिल रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे, धीरे धीरे प्यार में पड़ रहे थे। तो अमित जी के पास बड़ी सारी फिल्में थी, वो बिजी भी थे, लेकिन उनकी फिल्में इतनी चल नहीं रही थी। ऐसे में द सुपर सक्सेसफुल राजेश खन्ना जब उनको सेट पे देखते तो ऑफकोर्स उन्हें वो कॉम्पिटिशन लगते और वो उनको बहुत सारे ताने मारते। अमिताभ बच्चन भी सुन लेते, जया बच्चन भी सुन लेती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब काका ने एक बहुत ही खराब शब्द कहा। इस शब्द को सुन करके जया जी का सब्र का बांध टूट पड़ा और उन्होंने काका को जाकर के उनके कान में एक ऐसी बात बोली जिसके बाद से उन्होंने कभी भी अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं कहा। वो शब्द क्या था अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मनहूस, ये कह के बुलाया था काका ने अमिताभ बच्चन जी को। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है बावर्ची फिल्म की। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले ऋषिकेश दा, फिल्म के मेन लीड राजेश खन्ना और फिल्म की हीरोइन जया बच्चन। ये वो टाइम था जब जया बच्चन जया बहादुरी थी और अमिताभ बच्चन बहुत सारी फिल्में कर रहे थे लेकिन उनकी फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, वो फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी एक के बाद एक। ये वो टाइम था जब जया जी और अमिताभ बच्चन प्यार करने लगे थे एक दूसरे से, तो अमित जी ना बावर्ची के सेट पे उनसे मिलने जाते थे और हाँ ऋषिकेश दा तो उनके दोस्त ही थे। ऐसे में राजेश खन्ना को बहुत अखड़ते थे। राजेश खन्ना चलते फिरते अमिताभ बच्चन को कोई ना कोई ताना मार ही देते थे। पर एक दिन ऐसा आया जब जया जी के सब्र का बांध टूट गया और वो था जब राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को कहा, मनहूस, तुम मनहूस हो, जिस भी फिल्म में जाते हो वो फ्लॉप हो जाती है। ये बात जया जी के दिल पे सीधे जाके चुभी। उनको इतना गुस्सा आया कि अमित जी उन्हें चाय पे वापस बैठाते रहे, बैठ जाओ छोड़ो जाने दो। जया जी गुस्से में उठी, राजेश खन्ना के पास गई और उनके कान में कहा, एक दिन पूरी दुनिया देखेगी कि ये आदमी क्या बनेगा और आप क्या रह जाएंगे। इस एक लाइन के बाद वो वापस आके चाय पीने लगी एंड आफ्टर दिस काका ने अमिताभ बच्चन को कभी ताना नहीं मारा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और भी किस्से हैं उस जमाने के, तो गाने सुन करके यहीं वापस आना।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: द लेट इरफान खान से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है, इज इट दिल्ली, इज इट मुंबई?
4: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
3: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: 89.6 आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा एक और चीज में ये फिल्म बावर्ची खास थी, पुरानी जीन्स पर। हाय मेरा नाम है श्रेया और आज मूवी बावर्ची की बात कर रहे हैं। राजेश खन्ना, जया बच्चन एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। राजेश खन्ना यानी काका उस टाइम पे ना सुपरस्टार थे, बल्कि कहा जाता है कि इंडिया के वो फर्स्ट सुपरस्टार थे। उनके साथ हर हीरोइन ने कई सारी फिल्मों में काम किया था, फिर चाहे वो शर्मिला टैगोर हो, मुमताज जी हो, आशा पारेख हो, जीना तमान हो, तनुजा जी हो, ऑल ऑफ देम। लेकिन सिर्फ एक हीरोइन थी जो उस टाइम पे अपने स्टारडम के पीक पे थी, पर काका से थोड़ी दूरी बना के चलती थी। उन्होंने राजेश खन्ना के ऑपोजिट एज इज लव इंटरेस्ट सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया और वो थी बावर्ची। जया जी और राजेश खन्ना की ये रोमांटिकली पेयरअप होने वाली पहली और आखिरी फिल्म थी, इसीलिए है ना ये यूनिक फिल्म, क्योंकि ऋषिकेश दा इन दोनों को एक साथ ले आए थे इस पिक्चर में। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, वापस आओ, बातें तो अभी बहुत सारी बाकी हैं उस जमाने की।

एक ऐसी फिल्म जिसने हमें जम करके हंसाया और बहुत सारे सीन्स में इमोशनल भी कर दिया, आज उसी की बात हो रही है, बावर्ची। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही हूँ ऋषिकेश दा द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। अच्छा, जो रेट्रो फैंस हैं उन्होंने डेफिनेटली ये फिल्म देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म में राजेश खन्ना बावर्ची बने थे, एक जॉइंट फैमिली के लिए खाना बनाया करते थे। पर अगर जब आप फिल्म देखोगे ना तो वो खाने से ज्यादा वो पूरी फैमिली का ख्याल रखते थे। सबके सीक्रेट्स भी इसी बावर्ची के पास होते हैं। जब ऋषिकेश दा ने ये अलग हट करके कैरेक्टर, एकदम अलग हट करके फिल्म काका को सुनाई ना, उन्हें बड़ा पसंद आया। सबसे ज्यादा एक्साइट उनको किया था बावर्ची की कॉस्ट्यूम, हाफ पैंट्स, एक शर्ट और सर पे टोपी। अब ये जो टोपी थी ना, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इस टोपी को दो वजहों से पहना था राजेश खन्ना ने, एंड वो दो रीजंस क्या थे? आहा, अब तो आप मुझे जान गए हो, ऐसे कहाँ बताती हूँ मैं आपको। ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में श्रेया को तो बड़ा मजा आता है, तो गाने सुन करके जल्दी से वापस आओ, फिर बताती हूँ इस टोपी के पीछे की कहानी। ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो विनीत जी।
4: हाँ जी
3: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
4: सही है। हाँ मैं तो चल रही है।
3: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
4: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं
4: 9:30-10 बजे तक। ये बताओ ना बचा जाएगा?
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
4: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
4: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
3: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूं सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए ये देखिए।
4: हेलो
3: हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
4: क्या बजा रहा है ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
4: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मैं मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे मिस्टर थॉमस घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
4: हेलो हेलो
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
4: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
3: विनीत मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर।
4: अरे कॉफिन क्यों लेके आए तुम?
5: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मुबारक हो आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
4: अच्छा भैया
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

लोगों को लगा कि ये टोपी राजेश खन्ना ने फिल्म के कॉस्ट्यूम के चक्कर में पहनी है, लेकिन इसका रीजन तो कुछ और ही था। हाय, मैं हूँ श्रेया और आप सुन रहे हैं मुझे पुरानी जीन्स पे, और आज बात हो रही है द फिनोमिनल फिल्म बावर्ची की। अच्छा, ऋषिकेश दा जब ये रोल लेकर के पहुंचे राजेश खन्ना के पास, तो उन्हें लगा था कि शायद काका मना कर दें, क्योंकि तब काका इमोशनल रोल्स तो कर रहे थे, लेकिन उनको साथ में अच्छा दिखना बहुत पसंद था, गुड लुक्स। सो राजेश खन्ना अपने कपड़ों को लेकर के, अपने कॉस्ट्यूम्स को लेकर के बहुत पर्टिकुलर होते थे। जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में वो बावर्ची का रोल प्ले करेंगे और उन्हें एक बावर्ची जैसे कपड़े पहनने हैं, तो उन्होंने हामी भर दी। ऋषिकेश दा को बड़ा अचंभा हुआ। फिर राजेश खन्ना ने एक बात कही कि उनके सर से बावर्ची की टोपी, अगर आप देखो ना, एक पॉइंटेड सी टोपी पहने वो, जिसे उन्होंने एक सेकेंड के लिए भी फिल्म में नहीं उतारा। सो काका ने कहा कि इस पूरी फिल्म में वो ये टोपी पहने रहेंगे। तो ऋषिकेश दा ने आंखें छोटी करते हुए उनको शक की निगाहों से देखते हुए पूछा कि राजेश, तुम ये टोपी कॉस्ट्यूम के लिए पहनना चाहते हो या फिर कोई और रीजन है? काका ने मुस्कुरा के पता है क्या कहा, कि उनके बाल कम हो रहे हैं और टोपी की वजह से वो छिप जाएंगे। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, और भी बातें बताऊंगी ना, वापस तो आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: खटखट
2: कौन है?
1: दवे।
2: दवे कौन?
1: The way you love me, आई हाय मर जावा।
2: खटखट who that?
0: Only on 89.6 मिर्ची 1 It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषिकेश दाना बंगाली फिल्मों से बहुत इंस्पायर होते थे, बहुत इम्प्रेस होते थे और इसीलिए उनकी कई सारी फिल्में बंगाली फिल्म से ही इंस्पायर्ड थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। बावर्ची की बात हो रही है। ऋषिकेश दा ने बनाई थी, राजेश खन्ना और जया बच्चन थी विद अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स। ए के हंगल थे, असरानी साहब थे, दुर्गा खोटे थी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि बावर्ची भी एक बंगाली फिल्म से इंस्पायर्ड थी और इसका नाम था गोल्पो होलियो सोटी। ये फिल्म तपन सिन्हा ने बनाई थी। बनी तो ये 1966 में थी, लेकिन जब ये ऋषिकेश मुखर्जी ने देखी थी, उन्होंने तभी सोच लिया था कि वो ये फिल्म राजेश खन्ना के साथ हिंदी में बनाएंगे। पुरानी जीन्स पर आज इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी, तो श्रेया के साथ वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहां चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: ट्रांस पर आप श्रेया के साथ। मेरा जाने का टाइम तो हो गया है, पर आपको पता है ना मैं अकेले नहीं जाती हूँ। इस समय एक गाना चूज करके मैं और आप मिल करके हाईवे तक घूम के आते हैं। तो चलो गाड़ी में जल्दी से बैठो। तो आज का मेरा हाईवे हिट पहली मुलाकात पे, एंड स्पेशली जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलने वाले होते हो ना, तो वो जो एक्साइटमेंट होता है ना कि क्या बातें होंगी, वो मुझसे क्या कहेगा, मैं उससे क्या पूछूंगी, आगे कॉन्वर्सेशन कैसे बढ़ाएंगे, अच्छा हम कैसे लग रहे होंगे एक दूसरे को, ये सब सवाल होते हैं ना। तो आज उसी एक्साइटमेंट पे
1: आज उनसे पहली मुलाकात होगी।
0: ये गाना सुनते हुए चलते। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो फेसबुक और इंस्टा पे, आरजे श्रेया विद लव, ये है मेरा हैंडल, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव।